0: अपने प्रोग्राम का शुरुआत किया हमने दो नाट से. दिस इज इन रिकॉग्निशन टू फोर्थ कमिंग मिलादुन नबी विच विल बी ऑन द 12th डे ऑफ रबुल अव्वल नेक्स्ट ट्यूजडे.
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा. इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं. सुनते रहिए संगीत की झनका.
2: दिलों को झंकृत करें

0: ब्रिस्बेन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बानी AM।
1: वक्त लकीरें खींचता है इंसानी चेहरों पर, बीते समय पर वक्त चला जाता है। ये लकीरें ठिठक जाती हैं, छूट जाती हैं, देर तक अपने होने का एहसास जगाती। इन लकीरों पर चंद नई लकीरें उभरती हैं, कुछ पहले से और ज्यादा साफ और अलग। ये अपनी अलग छाप या पहचान या छोड़ जाती हैं यादें।
2: यादों का सफर।

दम तमाते हैं सुलगते हुए रुखसार तेरे, तम तमाते हैं सुलगते हुए रुखसार तेरे, आंख भर कोई देखेगा तो जल जाएगा। इतना सयाल है ये पल कि गुमा होता है, इतना सयाल

0: नगमे हैं, किस्से हैं, शिकवे हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, लेकिन यादें याद आती हैं।
1: हाँ, यादें जो कभी इंद्रधनुषी रंग बिखराती हैं, तो कभी कांटों की सेज पर सुलाती हैं।

की मीठी मीठी किसक, प्यार की मीठी मीठी किसक, आंखों में पहले पहले प्यार की नमी, सोचो मैं किसी की खूबसूरत चेहरा और तरोताजा गुलाब के सुर्ख फूल, है ना यही यादों का सफर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
2: और ये है संगीत की जानकार रेडियो 1701 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान।
0: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार। संगीत ताल और मेलेडी का एक संगम है। आज के संगीत पर सिर्फ पर्केशन और रिदम का राज है। रैप म्यूजिक, अय्यर रहमान साहब का म्यूजिक, सब पर ड्रम्स या ताल का ज्यादा असर है। लेकिन पहले धुन यानी कि मेलेडी गाने का जान माना जाता था। हम आपको ले चलेंगे उस दौर पर जब सिर्फ धुन यानी कि मेलेडी का राज था। When melody was supreme।
2: यादों के अंतर्गत अब When melody was supreme।

संगीत की झंडार पर राब, अभी से लेकर 8 बजे तक वन मेलोडी वाज सुप्रीम, यानी कि धुन का राज था उन दिनों।

0: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
1: और वो रेडियो है 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24 आवर हिंदी रेडियो स्टेशन 79.1 रेडियो ब्रिस्बानी। और रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन पर आपके लिए हम पेश करते हैं संगीत की झनकार। हर रविवार को प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं गीत माला से। आपने हमारा साथ देते हैं तो आपका स्वागत हम करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई, यानी कि डाउन मेमोरी लेन।

शम्मी कपूर की फिल्म तुम सा नहीं देखा से निकली हुई अपनी नैयर के संगीत पर अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को यादों के अंतर्गत वन मेलेडी वो सुप्रीम।

संगीत किचन का केंद्र गत सुन रहे हैं यादें, और यादें में आपके लिए पेश कर रहे हैं ऐसे गीत, उन दिनों के गीत

यादों के सफर के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे वन मेलेडी व सुप्रीम आपके साथ फिरोज खान। अभी थोड़ी देर में रंजना कुमार एक लम्हा साथ तुम्हारे, लता मंगेशकर के साथ गुजारेंगे आज रात हम, हफीज अली के साथ महफिल गजल और पद्मश्री, गीत संगीत शायरी और गजलों का एक हसीन संगम।

0: शम्मी कपूर और सारा बानो की फिल्म काश्मीर की कली।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झलक।
2: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे,
2: इस छोटी से कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं संगीत की जानकार पर। आप जानते हैं संगीत की जानकार इस स्टेशन पर हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक, और हर सप्ताह की तरह संगीत की जानकार का शुरुआत करते हैं हम चुने हुए लोकप्रिय संगीत, पुरानी फिल्मों से निकाली हुई हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जिसको सुनकर आपको एक बार फिर संगीत की जानकार को सुनने को जी चाहता है, और इसलिए साथ देने के लिए और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलो, अक्सर हम इस वक्त आपके लिए फेस करते हैं हिट्स ऑफ 90s, लेकिन आज सुबह, लेकिन इस बार आपके लिए शेर नगमा, गीत संगीत शायरी या गजलों का एक हसीन संगम शेर नगमा, और इस बार शेर नगमा के साथ ये है पद्मश्री।
3: कुछ फासले सिर्फ आंखों से होते हैं, दिल के फासले तो बातों से होते हैं, कोई भुलाने की कोशिश करे पर कुछ रिश्ते खत्म सिर्फ सांसों से होते हैं।

तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं अब सोचने लगे हैं हम कि जिंदगी के हर लम्हे में तेरी जरूरत लगती है।

शायरियों की महफिल में बात चली एक दीवाने की। मैंने सोचा कौन होगा ये सिर्फ फिरा, देखा तो उंगली मेरी तरफ थी सारे जमाने की।

0: ये है संगीत की झंकार और आपके साथ फिरोज खान। संगीत की झंकार हर रविवार को 5 से लेकर 8 बजे तक 79.1 पर, और संगीत की झंकार पर आप सुन रहे हैं शेरो नगमा। शेरो नगमा के साथ ये है पद्मा।
1: हमने सीने से लगाया, दिल न अपना बन सका, मुस्कुराकर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया।

0: ये है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बन, ब्रिस्बन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो।
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड। यू फोन अस ऑन 327-9701। वी लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू अस। ये है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं शेर नगमा, और शेर नगमा में शामिल है और ये है आपकी मेजबान पद्मा।
2: बेजबानी जबान न हो जाए, बेजबानी जबान न हो जाए, राज़ उल्फत आयान न हो जाए।

0: गहरी हो तो रुक रुक के कसक होती है, याद गहरी हो तो रुक रुक के कसक होती है, दर्द मीठा हो तो थम थम के करार आता है।
1: यादों का सफर, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई। ये है संगीत की जानकार और आपका साथ फिरोज खान, और आप सुन रहे हैं शेर और नगमा। एक बार फिर शेर और नगमा में शामिल करते हैं पद्मा को।
2: आसमां का एक हिस्सा मेरे देखने के लिए है और जमीन का एक हिस्सा तुम्हारे चलने के लिए। सूरज तुम्हारी आंखों से निकलता है और चांद मेरी दिल में डूब जाता है। समंदर का शोर तुम्हारे दिल में बंद है और दरिया की खामोशी मेरी आंखों में।

कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा।

0: यह है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं शेरो नगमा। शेरो नगमा के बाद करीबन 7 से लेकर 8 बजे तक यादों का सफर, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई।
1: हाय दोस्तों, मैं हूँ रंजना कुमार। क्या आप भी शेरो शायरी के शौकीन हैं? क्या आप भी दिलों के जज्बातों को अल्फाज देना चाहते हैं? तो देर किस बात की, फोन उठाइए और फिरोज को SMS करें अपने दिल की बात, शेरो शायरी और नज्म। आपकी शेरो शायरी और नज्मों की रिकॉर्डिंग का इंतजाम फिरोज करेंगे। और अगर आप खुद बोलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपनी शायरी SMS करें, आपके अल्फाजों को हम आवाज देंगे। तो उठाइए फोन और SMS करें फिरोज को 04-31919-964 पर। याद रहे फोन नंबर 04-31919-964।
0: और शेरो नगमा को जारी रखते हुए एक बार फिर शेर शायरी लेकर ये है पद्मा।
2: अजीब भी तू है, नसीब भी तू है, दुनिया की भीड़ में करीब भी तू है। तेरी दुआओं से चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा भी तू है, तकदीर।

संगीत की जानकार पर आप सुन रहे हैं शेर नगमा। गीत संगीत शायरी और गजलों का एक हसीन संगम शेर नगमा, और शेर नगमा के साथ ये है पद्मा।

सब कुछ पास है लेकिन कुछ भी नहीं रहा। उसकी जुस्तजू थी वो ही नहीं रहा। कहता था एक पल न रहूंगा तेरे बगैर। हम दोनों रह गए, वो वादा नहीं रहा।

आज रेत पर तेरा नाम देख के समंदर भी पागल हुआ है। पहली बार किसी की नजरों के वार से दिल घायल हुआ है। कुछ तो जुनून होगा तेरे नाम में, यूं ही उसका दीदार नहीं होता। कातिलाना होगी तेरी अदाएं, वरना यूं दिल घायल नहीं होता।

आज हम उन्हें बेवफा कह के आए हैं, उनके खतों को पानी में बहा कर आए हैं, कोई निकाल कर पढ़ ना ले उन्हें, इसीलिए हम पानी में आग लगा कर आए हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ रंजना कुमार। क्या आप भी शेर व शायरी के शौकीन हैं? क्या आप भी दिलों के जज्बातों को अल्फाज देना चाहते हैं? तो देर किस बात की, फोन उठाइए और फिरोज को SMS करें अपने दिल की बात, शेर व शायरी और नज्म। आपकी शेर व शायरी और नज्मों की रिकॉर्डिंग का इंतजाम फिरोज करेंगे। और अगर आप खुद बोलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपनी शायरी SMS करें, आपके अल्फाजों को हम आवाज देंगे। तो उठाइए फोन और SMS करें फिरोज को 04-31-919-964 पर। याद रहे फोन नंबर 04-31-919-964।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

Good afternoon and welcome back to Radio Rizvani. नमस्कार किंचु सासिकाल सलाम अलैकुम बुला कहते हुए एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। और आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर शाम का सफरनामा कार्यक्रम में जो हम पेश करने जा रहे हैं ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आप सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर। ये कार्यक्रम लाइव हम आपके लिए अपने स्टूडियो से पेश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। रविवार के दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगल में हो ये हमारी कामना है। बहुत ही खूबसूरत दिन आज है और जो साथियों तापमान यानी टेम्परेचर मोमेंट मेरे ख्याल से 22 डिग्रीज है यहाँ जिंदली में और कैरनडेल की तरफ अगर आप है अबाउट 21-20 डिग्रीज तक होगा। खूबसूरत सा दिन है बहुत ही खूबसूरत सा धूप निकला हुआ है बाहर। दो साथियों क्या आप कर रहे हैं भोजन कर रहे होंगे शायद आप विश्राम कर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं गाड़ी में सफर कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं शायद आप कुछ लोग गार्डनिंग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है जो भी आप कर रहे हैं साथ में हो जाएगा क्योंकि अभी से लेकर ढाई बजे तक यानी दो घंटा का रंगारंग कार्यक्रम आपके लिए हम पेश करेंगे रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से अपने स्टूडियो से लाइव कार्यक्रम। कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है अभी से लेकर ढाई बजे तक। फोन नंबर हमेशा की तरह 3219-1701। देश विदेश में आप है इंटर स्टेट में आप है ब्रिस्बेन में आप है जहां तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। खूबसूरत गीत मिले जुले संगीत का कार्यक्रम हमारे साथ आप सुन सकेंगे ठीक है इसे लेकर ढाई बजे तक रेडियो ब्रिजवानी पर। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है। अगर आप हमें सुन रहे हैं जरूर से हमें मोबाइल पर टेक्स्ट करिएगा कि आप हमें सुन रहे हैं हम आपके लिए खूबसूरत से गीत में आपका नाम जरूर से शामिल करेंगे। शाम का सफरनामा कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं और ढाई बजे तक जरूर साथ दीजिएगा।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

दूसरी साथी, अगर आपने अपना रेडियो भी खोला है आपका और हमारा साथ रहेगा, ठीक है। पिछले का टाइम दी थे कि आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर हम रेडियो ब्रिजवानी पर करना चाहेंगे। मैं हूं रोहित सिंह, ठीक है। लेकर ढाई बजे तक आपका साथ दूंगा मिली जुली संगीत शाम का सफर में। हमेशा की तरह स्थानीय कलाकार और स्थानीय कलाकार से हम आज आरंभ करते हैं अपना कार्यक्रम। फिजी के सिर्फ फिजी के एडी विल्सन के आवाज में स्थानीय कलाकार रोहित सिंह के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर।

रॉयल जय की आवाज में सुनिए बहुत ही खूबसूरत गीत। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ आप सभी सुने शाम का सफर स्थानीय कलाकार में शिव रॉयल जय की आप सभी सुनने जा रहे हैं।

और एक और एक गीत हम आप सभी के लिए पेश करें करिश्मा की आवाज में, साथ में एक बार फिर रोनाल्ड जय, और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम का रुख आप सभी के लिए फिर बदलेंगे। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ आप सभी सुन रहे हैं शाम का सफर, साथ दीजिएगा।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आपको इसी के साथ है, ठीक है, अभी से लेकर ढाई बजे तक चलते कार्यक्रम का रुख हम आपके लिए पेश बदलते हैं और मिले जुले संगीत आपके लिए हम पेश करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, अभी से लेकर ढाई बजे तक रेडियो प्रेसवानी पर शाम का सफर में। स्वर्गीय लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी के लिए

और आप सभी सुन रहे थे स्वर्गीय लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत, और एल्बम का नाम है श्रद्धांजलि। एक और खूबसूरत गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे सुर के लता मंगेशकर की आवाज में। चलते एक और एक गीत हम आपके लिए पेश करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, पर उस गीत को बजाने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में अब एक आवाज जो हम फीजी में बहुत सुनते आ रहे थे छोटे से बचपन से, और बहुत बार सुना है हमने इसे न्यूजीलैंड में, मेलबर्न में और ब्रिस्बेन में हमारे साथ थी, जिसे सभी लोग बहन जी के नाम से जानते थे और हमारी लेती प्रभांति थी, स्वर्गीय प्रभा मिश्रा जी के बारे में बातें कर रहे हैं। इसके बारे में अगर हम बातें करें दोस्त साथियों तो शायद एक प्रोग्राम बहुत कम पड़ेगा। उनका जो हमारे साथ ताल्लुक था और हमारे जो इंट्रैक्शन उनके बीच उनके साथ था, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, अनमोल रिश्ता हमारे साथ था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ कि इट्स अ बिग लॉस टू द अनाउंसिंग इंडस्ट्री और रेडियो फिजी 2 के बहुत ही जाने माने अनाउंसर थी ये। और चलते हैं ये खूबसूरत गीत हम स्वर्गीय प्रभा मिश्रा के लिए पेश करते हैं, अपनी तरफ से एक छोटा सा श्रद्धांजलि, और उम्मीद करता हूँ ये नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा स्वर्गीय लता मंगेशकर की आवाज़ में एक बार फिर।

और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त साथी कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत से गीत में याद करते हैं श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद को, आप दोनों के लिए

चलते इस गीत पे एक बार फिर हम याद करते हैं श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद को, आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत संगीत रेडियो बिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक है अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा।

शाम के सफर रोहित सिंह के साथ आप सभी सुन रहे हैं, और चलते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत गीत हम आपके लिए पेश करते हैं, फरमाइश करने वाले श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप आप दोनों के लिए।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स।

0: Mount Gravatt Showgrounds, Office 5, 1644 Logan Road, Mount Gravatt, ample parking. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Digicel, better together.
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
5: Tal Event Shan ke saath pesh karta hai ग्रैंड भजन नाइट. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी. फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट में. $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे. मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट. ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट. समाज, संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति, संगीत और समुदाय की एक शाम. ग्रैंड भजन नाइट. कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त, 0452-584-926. ग्रैंड भजन नाइट.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: खूब सा संगीत रेडियो ब्रिस्बेन पर रॉय सिंह के साथ. याद कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा ठीक 2:30 बजे तक शाम का सफर में. साथ आपका और हमारा रहेगा. याद कीजिएगा दोस्तों, साथ ये रॉय सिंह के साथ है. ज़्यादा से साथ दीजिएगा रेडियो ब्रिस्बेन पर. लाइव कार्यक्रम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं अपने स्टूडियो से ठीक 2:30 बजे तक. जुड़े रहिएगा.

एक बार फिर इस गीत में याद करते हैं श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद को, आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म का नाम याराना, याद कीजिएगा शाम के सफर रोहित सिंह के साथ।

एक और एक बहुत ही खूबसूरत गीत श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद के लिए। उम्मीद करता हूँ ये गीत आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।

आशा भोसले की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत। स्टूडियो के घड़ी चार ठीक 10 मिनट रह गया 2 बजने में, 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर 2:30 बजे से आप 5 बजे तक सुख के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
11: यार, सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
13: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
13: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
14: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
12: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
15: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
12: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
15: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365. और ईमेल princejewelers@bigpond.com. फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट.
16: एक बार फिर प्रीति सागर की आवाज में आप सभी के लिए रेडियो ब्रिसवानी पर स्टूडियो के घर से ठीक 2 बज चुका है. 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा. साथ जरूर दीजिएगा.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

दूसरे इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार के शाम ठीक 12:30 बजे से फिर होगा। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सुर के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे ठीक 5 बजे तक। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड। और इसी के साथ साथ आप सभी से हम रुख्सत लेते हैं और कहते हैं कि नमस्ते, शब खैर और विनाकार।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701 2:30 नाउ स्टूडियोज. नाउ जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विजवानी सुन रहे हैं. रेडियो विजवानी आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ. सो दोस्तों, अभी आपके साथ ये रोहित सिंह ने अभी से लेकर ठीक 5 बजे तक साथ है हमारा आपका एक प्यारा सा सफर पर, संदेश शाम सफर.

जी हाँ, इसी के साथ साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आज हमारे पास एक वेडिंग एनिवर्सरी अनाउंसमेंट है, और इसी के साथ अगर आज आपकी भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं रेडियो बुजबानी के साथ 3279-1701 पर, नहीं तो हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं।

जिंदगी क्या है दोस्तों, जिंदगी जबरदस्त है। अपनी जिंदगी से बेपनाह प्यार करो, हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। और वो दिन जरूर आएगा दोस्तों जिसका बेसब्री से आपका इंतजार है। और बस यही ऊपर वाले पर भरोसा करो और वही सुकून का इंतजार करो।

चलते हैं आगे बढ़ते हुए, सुनते हैं फिल्म डुप्लीकेट सिलवा गीत। बहुत दिन हो गए शायद आपने इस गीत को नहीं सुना, जहां प्रदीप अजुई चाला सोनाली बिंद्रे शाहरुख खान के लिए। फिल्म का नाम डुप्लीकेट।

చేస్తే బార్ ఫేర్ పదే పార్ షారుఖ్ ఖాన్ जी चाला सोनाली बिंद्र के लिए फिल्म डुप्लीकेट से लिया गीत आपने सुना। ये है शाम का सफर रेडियो विस्पानी। अयम पौने तीन बजने वाले हैं हमारे स्टूडियोज के घड़ी में चलते हैं फरमाशी शुरुआत करते हैं जबकि बहुत से लोग ऑलरेडी लाइनअप हो गए हैं। सबसे पहले पार्किंग सिन की ओर पढ़ते हैं जहाँ पर हमें सुने आशिक और आसमा आप दोनों के लिए आज का पहला फरमाशी गीत दोनों के लिए जालिमा।

0: बात बरस गई तो पर्दे पर शाहरुख खान के लिए आपने सुना जिसे फरमाइश करने वाले थे आशी को आसमा फ्रॉम पाकिस्तान।
1: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय
2: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस फॉर कस्टमर्स लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली कंसीडर इफ राइट फॉर यू एलिजिबल।
0: तो चले हैं दोस्तों अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं जबकि बस 5 मिनट रह गए हैं हमारे स्टूडियोज में 3 बजने में। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी आपकी अपनी पहचान। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वाणी IM पर। हम चलते हैं अगली गीत की फरमाइश हमारे पास है केडोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से। आप दोनों के लिए लता और रफी साहब की आवाज में बहुत प्यारा सा गीत है और फिल्म का नाम है आओ प्यार करी 1964 की फिल्म। और गीत के बोले तुम अकेले तो बाग में जाया न करो।

beautiful song dosto Rafi aur Lata ki awaaz mein aapne suna aur farmaish karne wale the Kedron Park se Joni aur Savita aap sun rahe hain aapki apni pehchan Radio Vishwani 1701 kHz par hamare studios mein 3 bajne wale hain aaj aapke saath hai so waqt aur zindagi dono hi anmol hai dosto ek laut kar nahi aata dusra ruk kar nahi chalta is zindagi tamanna ka guldasta hai ki तो है जो महकती है कुछ मुरझाती है और कुछ चुभ भी जाती है जिंदगी की किताब का हर पन्ना सब कुछ सिखा जाता है जो हर हाल में मुस्कुरा दे वही जीना सीख जाता है फरमाइश है हमारे पास रेड बैंक से गंगा और गीता की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत निश्चय आ रहा

0: सैयार सेलेवा, ब्यूटिफुल सॉन्ग आपने सुना। फरमाइश करने वाले थे गंगा एंड गीता फ्रॉम रेड बैंक।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। A place to call home, खोजो।
0: चलते हैं अगले गीत की ओर। हम बढ़ते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो USA की ओर चलते हैं, और वहां से हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश किसकी आई है। हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं कामनी नारायण। कामनी, चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।
2: कैसे
0: आपने फरमाइश किया है सावन पर, ब्यूटीफुल सॉन्ग।

अच्छा दोस्तों, सावन पर बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना और इसकी कोई फरमाइश करने वाली थी कामिनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। इस गीत में बहुत सारे से मीनिंग थे और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बार इस गीत को मैंने सुना एंड आई रियली एंजॉयड इट। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान, और हम चलते हैं कुछ इसी तरह के गीत की फरमाइश है। अगला गीत हमारे पास आई है एश ग्रोव एवेन्यू से आनंद चौधरी और रजीना चौधरी की ओर से। शायद आप इस गीत को जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मीनिंगफुल बहुत अच्छी लगेगी। 50 साल पहले वर्डिंग्स इसका है।

बहुत प्यारा सा सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग रजीना आंटी, और वहाँ पर हमें सुन रहे हैं आनंद चौधरी, रजीना चौधरी, एश ग्रोव एवेन्यू में। हम आप दोनों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी आई गॉट फ्यू मैसेजेस, या पीपल लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी। 12 मिनट हो गए हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 3 बजकर, यह है शाम का सफर, और सफर पर आपके साथ एक बार फिर सु है, और साथ हमारा आपका ठीक 5 बजे तक चलते हैं दोस्तों एलए लॉस एंजलिस की ओर। फरमाइश है हमारे पास राया, क्रिस्टीन, रोनिल, प्रमिला और विनय की ओर से आप सभी के लिए अगला गीत।

आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में बिल्कुल ही नए अंदाज में न्यू वर्जन पर इस गीत हमारे साथ शामिल हो गए थे, यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं लॉस एंजेलिस एलआई में राया क्रिस्टीन रोनिल प्रमिला और विनय। चलते हैं दोस्तों मेलबर्न की ओर, फरमाइश आई हमारे पास मेलबर्न से शीला सिंह की ओर से, आप सुनना चाहती है अगला गीत।

0: अच्छा पर्दे पर आमिर खान उदित नारायण की आवाज का सॉन्ग आपने सुना। फरमाइश आई थी हमारे पास मेलबर्न से शीला सिंह की ओर से। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वाणी।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। A place to call home, खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। A place to call home, खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
0: तो चलते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर। हम बढ़ते हैं, हम सैक्रामेंटो USA की ओर चलते हैं। बहुत देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कौन? विजयन। जी हाँ विजयन, चलते हैं आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

और परमेश करने वाले थे विजय जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो वसवाणी, आपकी अपनी पहचानी है शाम का सफर, और शामिल हो गई है हमारे साथ हमेशा की तरह आमला सिंह फ्रॉम शिकागो।

0: और इसकी तो फरमाइश किया था अमला सिंह फ्रॉम शिकागो। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com।
3: फैमिली यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में।
0: चलते हैं दोस्तों, वादे के मुताबिक हम लेकर आ रहे हैं आज के वेडिंग एनिवर्सरी अनाउंसमेंट, जो बहुत देर से सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और कौन है तो आप सुनने जा रहे हैं आज, कौन अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। जी हाँ, शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं आज। हम चलते हैं फॉरेस्ट लेक की ओर, जहाँ हमें सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसिस सेठ राम, और आज अपने 51 वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। और शायद आपको पता होगा, उन्होंने बहुत बड़ी ही सनातन सिंटा में बहुत बड़ी 50th लास्ट ईयर किया था। इतना जल्द अनदर ईयर इज गॉन, तो 51 शादी की सालगिरह बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं, देखिए आप दोनों को बहुत सारे से लोग याद किए हैं, आपके दो बेटियां हैं, ग्रैंडसन हैं, और साथ में आपके दो दामाद हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं आपको ब्रिस्बेन से, फिजी से, सिडनी से, मेलबर्न से, सभी जगह से आज आपको याद किया है आपकी शादी की सालगिरह पर। हम आप दोनों को यही कहना चाहते हैं कि आपका रिश्ता सदा प्यार से भरा रहे, और हर साल की तरह सालगिरह खास बनती रहे। सालगिरह के बहुत डेरे डेरो आप दोनों को शुभकामनाएं, खुशियों की रोशनी सदा आपके साथ हो, हर आने वाला दिन आपके दिल में बेहद खास हो। सुबह की पहली दुआ आप दोनों को, दोनों के पास हो, आप दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दे ऊपर वाले। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा गीत है।

और हम भी ये कहना चाहते हैं कि 100 साल आप दोनों का रिश्ता बना रहे. मिस्टर मिसेस सेतराम फॉर लाइक आज अपने 51 शादी की सालगिरह वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रॉम रेडियो ब्रिजवानी टीम. हम चलते हैं दोस्तों, आप दोनों की एक और फेवरेट सॉन्ग है सुनते हैं.

अरे तो हमें पता नहीं है कि आप दोनों को 100 साल पहले कैसे प्यार हुआ। ये तो 51 ईयर शादी की सालगिरह आप सेलिब्रेट करें। वैसे हमारे मौसा मौसी बड़े ही रोमांटिक कपल है जो फॉरेस्ट लेक में आज अपने 51 शादी की सालगिरह मना रहे हैं। वैसे मुझे खुद ही एक दिन बताया था कि उनके जो घर थे बिल्कुल ही आमने सामने थे, क्या बात है। और हमेशा गीत, कौन सा गीत हमेशा फरमाइश करते रहते हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में। तो चलते हैं, इसी के साथ साथ उन्होंने आज एक श्रद्धांजलि गीत की भी फरमाइश किया है। और ये फरमाइश जो है, कल जैसे बहुत लोगों ने हमारे साथ शामिल हो गए थे, जैसे आप सभी को पता है हमारी फॉर्मर अनाउंसर रेडियो फीजी की जो बहन जी माना जाने अनाउंसर थी, और साथ साथ में रेडियो तरोना न्यूजीलैंड, रेडियो धड़कन मेलबर्न, रेडियो विस्वानी के अनाउंसर बहन जी प्रभा मिश्रा आज हमारे साथ में नहीं है। उनकी बहुत प्यारी मधुर मधुर आवाज से लोगों का दिल जीत लिया था। बहुत अच्छी प्रोग्राम ब्रिजवानी पर भी लेकर आती थी, और जो यहाँ पर जो सीनियर्स ग्रुप में उसमें भी इन्वॉल्व थी। और मुझे उनकी एक आवाज़ मेरे कान में गूंज गई है हमेशा। वो मुझे बिटिया कह के बुलाती थी, वो आवाज़ मेरे कान में आज तक है। बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी थी। तो चलते हैं, आज उनको एक श्रद्धांजलि गीत में याद कर रहे हैं। कल उन्होंने मिस कर दिया था, तो आज वो श्रद्धांजलि गीत में याद कर रहे हैं प्रभा मिश्रा को, मिस्टर एंड मिसेस सेतराम फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक।

0: सफर।
1: कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना पर्दे पर राजेश खन्ना, और खास फरमाइश हमारे पास आई थी फॉरेस्ट लेक से मिस्टर मिसेस असित राम की ओर से। आज उन्होंने इस गीत में याद किया प्रभा मिश्रा जी को, जो आज हमारे साथ में नहीं है। चलते हैं ग्रीन एकर सिडनी की ओर। दोस्तों फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एकर सिडनी से रजीन और मालती प्रसाद की ओर से।

0: जरूर दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे रजीना मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर्स सिडनी।
1: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just an
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable price.
0: तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला फरमाइश इसी के साथ साथ, बस हमारे स्टूडियोज में 4 ही बजने वाले हैं। यह है शाम का सफर। इस सफर पर हमेशा इस वक्त आपके साथ होता है, सो साथ है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक। और अगली फरमाइश है हमारे पास ललिता गौतम की ओर से फ्रॉम सैक्रामेंटो USA, नाहिद अख्तर की आवाज़।

नाइट अक्कर के आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम की ओर से फॉरेस्ट लाइक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फरमाइश तलत महमूद की आवाज का एक गजल गीत सुनना चाहते हैं कौन, और फॉरेस्ट लाइक में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हाफिज अली खान, जावेद आखान।

और आपने सुना इस गीत को तलत महमूद की आवाज़ में फॉरेस्ट लेक से फरमाइश आई थी हमारे पास हाफिज अली खान जबीदा खान की ओर से। आचफ फील की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आचफ फील से हमारे साथ शामिल हो गए हमेशा की तरह अनवर और शहरुल।

रफ़ी और लता की आवाज़ में ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसे फरमाइश करने वाले थे अनवर और शहरोल फ्रॉम आज फेल। इस गीत के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है हमारी आजी थी मिसिस पूरन, हमारे जतीश भाई की माता जी, और उनको ये गीत बहुत पसंद था, उनका फेवरेट सॉन्ग था। कुछ ऐसे गीत थे जो उनके दिल के करीब थे और मुझे उनके सारे गीत पता थे, और जो अपना गीत सुनती थी बहुत खुश हो जाते थे, और हमें उम्मीद है वो कहीं भी है, कहीं से भी हमें सुन रही है। तो शी इज एंजॉइंग माई प्रोग्राम दिया, थैंक यू मिसिस पूरन। आज आप हमारे साथ में नहीं है, लेकिन जब भी मैं ये गीत प्ले करती हूँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी हमें सुन रही हैं, आपके लिए अगला गीत लक्ष्मी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, और हमारे साथ जरूर शामिल हो गए थे इस गीत में कौन, लक्ष्मी, जो हमें सुन रही है मेनली वेस्ट में। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो बिस्वानी 17.1 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। हम चलते हैं, हमारे पास डेडिकेशन है एक बार फिर, और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत से लोग सैक्रामेंटो यूएसए से, कामनी और उनकी बहन वहाँ सिडनी से आशा, और सूजी फ्रॉम सिडनी, प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो चलते हैं आप सभी के लिए अगला गीत आपकी फरमाइश पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग चंदन सा बदन, हमेशा इस गीत को आप सुनते हैं मुकेश की आवाज में, लेकिन लता जी की आवाज में भी एक गीत अच्छी लगती है। और आज इस गीत को फरमाइश करने वाली थी सैक्रामेंटो यूएसए से कामिनी, और उनकी बहन है वहाँ आशा एंड सूजी फ्रॉम सिडनी में हमें सुन रही है। प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701, और 19 मिनट हो गए है दोस्तों हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 4:07, हमारा आपका ठीक 5 बजे तक। और साथ दे रहे हमारा खोले हमारे पास जीबंग से टॉम मनीराम की ओर से, आप सुनना चाहते हैं अरे द्वार पालो।
1: गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, ए किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए

और इस कृष्ण भजन की फरमाइश है द्वारपालो सुदामा कृष्ण की कहानी यानी ट्रू फ्रेंडशिप स्टोरी भजन को फरमाइश करने वाले थे टॉम मनीराम फ्रॉम जीबांग। उनका कहना है कि इस ट्रू स्टोरी और टॉम हमसे यही कहना चाहते हैं आपसे कि आपके इस भजन के लिए भी आई गॉट अ फ्यू कॉल्स, पीपल हैव रियली एंजॉयड दैट। हम चलते हैं मेलबर्न की ओर दोस्तों। मेलबर्न से हमारे साथ जुड़े हैं अल्फ्रेड और किरण प्रसाद। आप दोनों के लिए अगला गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान दोस्तों। साथ ही हमारा आपका 5 बजे तक हम चलते हैं कैलिफोर्निया USA में, जहाँ मैं सुन रहे मैक्स प्रसाद। मैक्स चलते हैं आपके फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

बातचीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएस। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 5:15 बज चुके हैं और आपको पता है कि 28 यानी कि फ्राइडे को रक्षाबंधन है, तो चलते हैं राखी पर कुछ चलते चलते गीत सुनते चलते।

दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 5 ही बजने वाले हैं. और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन फॉर योर बेस्ट फीडबैक आउट देयर टुडे. हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर. और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, लेकिन याद रखिएगा ठीक 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगी शशि चौहान साथ, उनका जरूर दीजिएगा. और अगली मुलाकात तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय.

0: मुस्कुराते हुए चेहरे, यादों के सिलसिले और रविवार की ये मखमली शाम। जी हाँ, शाम के 5 बज चुके हैं।
1: एक रंगीन शाम आपके नाम शशि जोखन के साथ।
2: ये शाम

हाँ जी, हाजिर हो चुकी हूँ आपकी पसंदीदा धुनें लेकर। कहते हैं कि संडे की शाम जैसी कोई और शाम नहीं होती है, तो आइए इस शाम को और भी यादगार बनाते हैं एक साथ मिलकर। और आपको कहती हूँ नमस्कार, कैम छो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। जिस भी हाल में आप हो, जहां भी हो, आपको करती हूँ तहे दिल से स्वागत आज के एक रंगीन शाम आपके नाम रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से ये आप तक मैं लेकर आती हूँ।

हाँ जी, बस आराम से बैठिए, चाय का कप उठाइए और सुनते रहिए एक रंगीन शाम आपके नाम। तो इसी तरह मैं कई ऐसे ऐसे गीत आपके लिए बस लेकर आती ही रहूंगी और आप इसी तरह हमारा साथ देते ही रहिए, ठीक है।

जी, तो फिर आपको मजा आ रहा है ये गीत या नहीं? आई होप यू आर एंजॉयिंग इट. और अब चलते हैं, आप ये नगमा सुनिए. ये एक्चुअली इट्स मलकीत सिंह की आवाज में ये गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगी. हमारे जितने भी सिख भाई बहन सुन रहे हैं कार्यक्रम, आपको हम शामिल करते हैं इस नगमे में, इस गीत में.

हाँ जी, जागो जागो जी, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और हम आ गए हैं ना आपके लिए ये संडे की शाम, जैसे और कोई शाम नहीं होती है। बहुत सारे लाइनअप होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के, सभी अनाउंसर्स अपने अपने प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। और अब बारी है मेरी, और मेरे बाद में आएगी सताक्षी, ठीक है? और बस इस शाम को और भी हम यादगार बनाएंगे। आपके लिए मैं लेकर बेहतरीन नगमे आई हूँ, पुरानी यादें, कुछ मीठी मीठी बातें, और बस अपनी शाम को खूबसूरत बनाइए और साथ दीजिए नगमों की बरसात। और आपको अब मैं लेकर चलती हूँ लंदन की ओर, ठीक है? लंदन की ओर, जहाँ पर कहा गया है कि प्रिंस हैरी और मेगन वापस जा रहे हैं अपने देश। कैसे बच्चे होते हैं ना।

जी, आप सोच ही रहे थे कि मैं क्यों प्रिंस हैरी की बात कर रही थी ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो वैसे प्रिंस हैरी और मेगन अपने बच्चों को लेकर चले गए थे यूएस, है ना। तो और वहाँ जाकर उन्होंने अपने जो फैमिली है, रॉयल घराना जो है, उनकी बहुत बेइज्जती की है। मगर वहाँ रहने के बाद अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस आना चाहते हैं लंदन। तो आ भी रहे हैं, बच्चों की स्कूल की एंट्री भी करा चुके हैं, एंड बस अब कुछ ही दिनों में आप उन्हें वहाँ देखेंगे। अभी प्रिंस चार्ल्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद वो भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली के पास आना चाहते हैं ना इस समय। सो एनीवे, ये थी कुछ उनके बारे में बात। और चलते हैं, एक और नगमा सुनते हैं। सो ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, रेडियो ब्रिजवानी पर हर हफ्ते 5 से 7 बजे तक।

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, जरूर सुनते ही रहिए। और मैं आपके लिए कई ऐसे ऐसे गाने लेकर आऊंगी जो आपको जगा दे, ठीक है? अगर आप सोने के बारे में अभी से सोच रहे हो तो देखिए, हमारे कार्यक्रम कई उम्र के लोग सुनते हैं। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं हर तरह के सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आऊं। एंड अगर आप आपको अगर कोई गीत पसंद हो और मैं नहीं लेकर आती हूँ तो आप रेडियो स्टेशन पर बतला सकते हैं, जतीश जी से बतला सकते हैं, ठीक है? तो हम ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर वो नगमे आएंगे। देखिए, पारिवारिक विषय भी हम लेकर आते हैं, न्यूज़ व्यूज़ सभी कुछ होते हैं हमारे कार्यक्रम में। छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट जो होती है वो भी मैं लेकर आती हूँ, और पारिवारिक विषय जो लेकर आती हूँ वो मेरी थोड़ी सी फेवरेट ही है, आप कह सकते हो। तो देखिए, कभी आपने किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि भाई हमने तो कहा कुछ और ये समझ लिए कुछ और मुझे बहुत कुछ कहे गए, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, आप सुने होंगे ना कभी? तो आज मैंने सोचा कि चलो यही टॉपिक लेकर आऊं कि क्यों अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं लोग, ठीक है? क्यों अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं लोग? ऐसा क्यों होता है कि हम कहते कुछ और हैं और लोग समझते कुछ और हैं, या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक मैं 6 बजे के बाद लेकर आऊंगी, और इसी बीच छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आऊंगी। सुनते ही रहिए, ये बहुत ही मिक्स अप प्रोग्राम है, एंड आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, हमारा साथ दे रहे होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपका मन बहलाए। क्योंकि आज ऑफ कोर्स संडे की शाम है, और कल के लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे, मगर चलो ये गीत सुनाती हूँ आपको। याद है कौन से फिल्म का गीत है ये?

वाह, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग ना, बहुत ही बढ़िया. ये बहुत ही खास सॉन्ग है, बहुत ही खास, और फिल्म भी बहुत खास ही थी, पद्मावत, याद है आपको? तो जैसे हमने पहले कहा आपको, तो गीत के बोल तो ऑब्वियसली घूमर ही है. गाना राजस्थानी लोक संस्कृति और जो इनकी भव्यता है, इसका एक बेहतरीन प्रतीक है. और इस गाने में दीपिका पादुकोण ने पारंपरिक राजस्थानी जो घूमर नृत्य किया है, और इसके गायक श्रेया घोषाल और स्वरूप खान, बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने इस गीत को गाया. और जो म्यूजिक डायरेक्टर इसमें, संजय लीला भंसाली ही थे, और बहुत ही बढ़िया. तो इस गाने से जुड़ी, चलो मैं आपको कुछ खास बात बताती हूँ, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि दीपिका पादुकोण ने इस गाने में पारंपरिक राजस्थानी डांस सिखाने वाले गुरुओं के मार्गदर्शन में कठिन ट्रेनिंग ली थी, बहुत ही कठिन. दैट्स वाई शी डिड एक्सट्रीमली वेल. और ये जो शाही पोशाक वो पहनी थी गाने में, जो उन्होंने पहना था, ये लहंगा लगभग 30 किलोग्राम का था, 30 किलोग्राम. और इसके साथ भारी आभूषणों का इस्तेमाल भी किया गया था. अगर आपने इस गीत को यूट्यूब में आप देख सकते हो, या फिर आप इस फिल्म को ही लाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया. एंड घूमने की जो स्टेप्स है, दीपिका ने गाने की जो सीक्वेंस में कई बार घूम घूम कर अपना नृत्य कौशल दिखाया, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा. तो रिलीज होने के साथ ही ये गाना पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया था, और इसे कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है. तो अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर आप देखिए. और हाँ जी, अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो तहे दिल से करती हूँ आपका स्वागत. और अभी तो बहुत ही फास्ट सॉन्ग्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आ रही हूँ. सो चलो, ये गीत आप सुनिए.

हाँ जी, जो मैं जो पठान, साल 2023 का ये एक सुपरहिट हिंदी फिल्म पठान का एक लोकप्रिय गाना, और इसे यशराज फिल्म्स के तले बैनर तले 20 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। और इस एनर्जेटिक गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को देखा गया, साथ में नजर आए थे। और देखिए, ये एक बेहतरीन डांस पॉप ट्रैक है जिसे दर्शकों का बहुत बहुत प्यार मिला, और गाने के बोल और धुन जोश से भरपूर हैं, जो फिल्म के मुख्य किरदार पठान यानी शाहरुख खान के अंदाज और मिजाज को दर्शाती है। सो एनीवे, अब हम यहाँ से चलते हैं, मोड को जरा सा बदलते हैं, और कुछ हल्के फुल्के मिडल सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आए हैं। और लता जी और किशोर दा द्वारा गाए ये गीत आपके लिए, और आप सोचिए इन द मीन टाइम कि कौन से फिल्म का ये गीत है।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत। ये प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कभी कभी, जो 1976 की फिल्म थी, उसी का एक बेहद प्यारा और रोमांटिक गाना ये है। और इसे किशोर दा और लता मंगेशकर जी ने गाया, और बहुत ही मधुर धुन है इसका। और इस गाने में ऋषि कपूर और नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। तो ये 1976 की फिल्म, ठीक है। और हाँ, एक और बहुत ही बढ़िया सा नगमा।

किशोरदा की आवाज में आप ये नगमा सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा सा नगमा। और हाँ जी, कुछ ही देर में हम लेकर आएंगे छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में। कहते हैं ना कि लाइफ में आपकी गलतियां, आपकी हंसी, आपकी आपका टूटना, ये सब कैसे आपके लिए कीमती है, इसे हम जानेंगे कुछ ही देर में छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में। पर अभी तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नगमा, जिसे हमने आज फिल्म चाहत से लेकर आई हूँ आपके लिए। और कहते हैं चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, और चाहत से ही दुनिया बनी हुई है, सो दुनिया चल रही है। सो चलो ये गीत आप सुनिए।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, दैट इज सो सो करेक्ट। सो चलो चलते हैं छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट की ओर।
1: पनीर बन जाता है और पनीर दूध से महंगा होता है, और दूध जब और ज्यादा खराब हो जाते हैं और फर्मेंट हो जाते हैं तो वाइन बन जाते हैं, और वाइन अंगूरों से भी कई गुना महंगी होती है। सोचो गर्द होने के बाद, टूटने के बाद, बदलने के बाद ये चीजें महंगी कैसी हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस उन्हें बेटर बना देता है। और यही लाइफ में होता है, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी हार, तुम्हारा टूटना, ये सब कीमती बनने का प्रोसेस है। ये सब तुम्हें खत्म नहीं करते हैं, ये तुम्हें अपग्रेड करते हैं। जो टूटने से डर गया वो वहीं का वहीं रह गया, और जो टूट कर बदल गया वो पहले से ज्यादा कीमती बन गया।
2: दारू का ठेका खोलने के लिए एक बैंक मैनेजर ने,
1: दूध जब फट जाता है तो पनीर बन जाता है और पनीर दूध से महंगा होता है, और दूध जब और ज्यादा खराब हो जाता है तो चीज बन जाता है और चीज पनीर से भी महंगा होता है। अंगूर जब खराब हो जाते हैं और फर्मेंट हो जाते हैं तो वाइन बन जाते हैं, और वाइन अंगूरों से भी कई गुना महंगी होती है। सोचो गलत होने के बाद, टूटने के बाद, बदलने के बाद ये चीजें महंगी कैसी हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस उन्हें बेटर बना देता है। और यही लाइफ में होता है, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी हार, तुम्हारा टूटना, ये सब कीमती बनने का प्रोसेस है। ये सब तुम्हें खत्म नहीं करते हैं, ये तुम्हें अपग्रेड करते हैं। जो टूटने से डर गया वो वहीं का वहीं रह गया, और जो टूट कर बदल गया वो पहले से ज्यादा कीमती बन गया। दूध जब फट,
0: हाँ जी, तो ये थी आज की छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में आपके लिए। और हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, पूरे 7 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है। इसी तरह आप भी बस होले होले हमारे साथ चलते ही रहिए। और हाँ जी, शायद अगर आप वीकेंड ट्रिप के लिए गए होंगे और घर वापस लौट रहे हैं, भाई आराम से गाड़ी चलाइए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी के स्टीरियो पर आपके सफर को आसान बनाने के लिए बस सुनते ही रहिए एक रंगीन शाम आपके नाम। और चलो एक और गीत सुनते हैं, बहुत ही रंगीन शाम है ये शाम लेकर आई है बहार आपके लिए।

फैंटास्टिक. नाउ चलिए आपको मैं लेकर चलती हूँ, आपको बताती हूँ ये हिंदू फेस्टिवल्स जो आने वाली है ना, ये अपकमिंग हमारी जो त्योहार आने वाली है इसके बारे में मैंने सोचा आपको थोड़ा कुछ बता दूँ. तो ये जो हमारी प्रमुख हिंदू त्यौहार होते हैं, तो 26 अगस्त को ओणम होती है और फिर 28 अगस्त, हाँ जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, भाई बहन का प्यार जताने का समय, ये रक्षाबंधन जो होती है ना, दो भाई बहन का प्यार होते हैं तो इसके लिए एक खास दिन रक्षाबंधन होती है और ये 28 अगस्त को. और फिर उसके बाद में आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, इसकी शुरुआत होती है एक्चुअली शनिवार 29 अगस्त को और ये समाप्त होगी एक्चुअली 4 सितंबर को, हाँ जी. और फिर उसके बाद 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, फिर 15 को, फिर ऐसे करते करते बहुत कुछ अभी बीच में होती है, हमारे त्योहार का समय है अभी. और फिर 25 सितंबर पितृपक्ष आरंभ होती है, पितृपक्ष आरंभ 25 सितंबर से, और ये एक्चुअली फिर 11 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो जाती है. एंड फिर उसके बाद में दिवाली आती है, एंड दिवाली इस वर्ष 8 नवंबर को. तो ये थे सब, मगर कृष्ण जन्माष्टमी आने को है सो चलो सुनाती हूँ आपको. ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड नगमा है ये.

0: एक्चुअली ये अष्टमी वाली नहीं है, मगर आप इसे सुनिए।
1: मच गया शो

हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और ये है रेडियो भिजवानी का अपना ही कार्यक्रम यानी आपका कार्यक्रम। तो देखिए, कुछ ही देर में हम पारिवारिक विषय लेकर आएंगे, मगर अभी तो मैंने रियलाइज की कि मैंने अभी वो जो अंग्रेजी शब्द होती है, इंग्लिश वर्ड, उसे मैंने नहीं बताया ना। तो द वर्ड टुडे इज स्माइल, यानी SMILE वर्ड है स्माइल, उसका हिंदी शब्द आप ढूंढिए, ठीक है। तो और फिर मैं लगभग 7 बजने से कुछ पहले मैं बताऊंगी कि मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो एनीवे, इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कुछ न्यूज व्यूज की ओर। तो देखिए, टिकटॉक के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे ना, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग इसे फॉलो भी करते हैं, और कुछ लोग इसमें बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ते ही रहते हैं उसमें। तो देखिए, कई देशों में ये जो टिकटॉक है ये बैंड है, यानी कि वहाँ पर लोग इसे ना यूज़ कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कंटेंट डाल सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला क्यों? हाँ, कई ऐसे देश हैं जो ऑफिशियली लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो नहीं इसे चलाते। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कुछ ऐसे देश हैं जो इसे नहीं अलाउ करते अपने देश में। पहली तो इंडिया है, भारत। भारत में ये जो ऐप है ये टोटली बैंड है। ये 2020 से लगभग सिर्फ टिकटॉक नहीं, मगर कई अन्य चाइनीज एप्लीकेशंस जो है भारत में बैंड है। अफगानिस्तान, यहाँ पर भी तालिबान ने 2022 से इसे बैन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसका बहुत गलत इम्पैक्ट होता है युवा लोगों पर, और मिसलीड किया जाता है उन्हें। और ईरान भी इसे टोटली नेशन वाइड ब्लॉक कर दी है, इस प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर बिल्कुल नहीं ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं कोई। सोमालिया में भी यही बात है, इनडिसेंट कंटेंट और बहुत सारे प्रोपेगेंडर्स होते हैं, इसकी वजह से वहां पर इसे टोटल बैन किया गया है। तो ऐसे कई देश हैं, आप चकित रह जाएंगे, है ये जो टिकटॉक चाइना से ही आती है, ठीक है, मगर वहां पर इंटरनेशनल ऐप ब्लॉक की गई है, ठीक है, और इसे रिप्लेस की गई है, एक डोमेस्टिक काउंटर पार्ट है जो डोयिन करके बोलते हैं, वहां के लोग ये देख सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये जब खुद अपने ही देश में इसको बैन किए हुए हैं, तो और देश क्यों इसे अपनाए हुए बैठे हैं? तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, यहाँ के जो फेडरल डिवाइसेस और मिलिट्री फोन्स है, ये बाढ़ है, ये टिकटॉक उन पर बाढ़ है, ठीक है, ये जो ऐप है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बैन किया गया है, मगर सिर्फ पार्लियामेंट्री और सरकारी एजेंसी नेटवर्क्स और वर्क डिवाइसेस पर इसे बैन की गई है, मगर इन देशों में लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस भी इसे बैन कर चुके हैं, यहाँ अपने अपने जो स्टाफ की प्रोफेशनल डिवाइसेस हैं और जो भी है, इन्होंने इसको बैन कर रखी है अपने स्टाफ की प्रोफेशनल डिवाइसेस पर। तो ऐसे कई जगह हैं जो इसे बैन की गई हैं, मगर आप सोच रहे होंगे कि क्यों बैन क्यों किया जा रहा है। अगर आप इससे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने टिकटॉक को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए और सुनिए और देखिए लोग क्या क्या हरकतें करते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे जुबान यूज करते हैं। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ऐसे भी भाषा बोली जाती है, मगर इनमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालते हैं, जैसे कि कोई किसी देश में चले जाओ, वहां पर घूम घूम कर छोड़ते हैं टिकटॉक वगैरह वगैरह, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सारी गलत गलत बातें करते हैं यहाँ पर। सो एनीवे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और फिजी टूरिज्म की ओर बढ़ते हैं, तो फिजी में पहली तारीख सितंबर से 5% का नया टूरिज्म सर्विसेज टैक्स लगने जा रहा है। ये टैक्स उन बड़े टूरिज्म ऑपरेटर्स पर लागू होगा जिनका सालाना टर्नओवर
फिजियन 2 मिलियन डॉलर्स, लगभग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ले लो तो लगभग 1.3 मिलियन से ज्यादा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किन पर लागू होता है। ये लागू होता है बड़े होटल्स पर, रिजॉर्ट्स पर, क्रूजेस पर और टूर ऑपरेटर्स जो हैं जिनका कुल टर्नओवर फिजियन 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो इसमें शामिल सेवाएं क्या, रहने की जगह शामिल है, होटल में खाना पानी पीना जो आप करते हैं, लोकल टूर, ट्रांसफर और वाटर स्पोर्ट्स, पहले से की गई बुकिंग। अगर आपने पहले से बुकिंग किया है तो उसका क्या होगा, आप ऐसे सोच रहे होंगे, क्योंकि आप तो घूमने के लिए निकल ही जाएंगे ना कुछ ही दिनों में, फिजी जा रहे हो अगर, तो उसका क्या है। तो ये टैक्स 1 सितंबर से दी जाने वाली सेवाओं पर लागू होगा। इसका मतलब है कि जिन यात्रियों ने पहले से अपने ट्रिप बुक कर लिया है और प्री पे भी कर ली है, तो उनसे पहुंचने पर या बदले हुए इनवॉइस के जरिए 5% अतिरिक्त पेमेंट देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि आपने अगर अपने पेमेंट अपने ट्रेवल एजेंट को कर दिए हैं तो फिर भी आपसे पैसा लिया जाएगा, 5% अतिरिक्त पेमेंट, ऐसा कहा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की टॉप ट्रेवल इंडस्ट्री एसोसिएशन ATIA का कहना है कि टैक्स की घोषणा करने से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवल कंपनीज से इस पर बातचीत नहीं की गई थी। तो पीपल आर क्वाइट वरीड। सो एनीवे, चलो एक गीत और सुनते हैं, फिर उसके बाद में पारिवारिक विषय। टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ना।

हाँ जी, एक और बहुत ही बढ़िया सा नगमा था आपके लिए। और अब हम चलते हैं, हाँ जी, चलते हैं पारिवारिक विषय की ओर। और जैसे हमने कहा कि क्यों लोग अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं, हमारे जो अर्थ होते हैं उसको क्यों उलट फुलट कर देते हैं, तो ऐसा आपने सुना होगा लोगों को कहते कि मैंने तो ऐसा, आई डिडंट मीन दैट, तो उन्होंने इसका मतलब क्यों ऐसे लगा लिया। सो यही बात है कि क्यों अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं लोग, इसका मतलब यही है ना। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, कि लोग कहते कुछ और है और हम उनकी बातों का अर्थ कुछ और लगा लेते हैं। आपके साथ हुआ क्या ऐसा? मेरे साथ तो होते ही रहते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो मन आहट सा हो जाता है ना, जब आपको ऐसा लगता कि ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसा नहीं मीन किया, मगर इन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया। सो मन आहट हो जाता है। इससे बचने के लिए सुनते समय सामने वाले की भूल व भाषा की मजबूरी का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। एब्सोल्युटली इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी की बात का गलत अर्थ लगाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है, मगर कारण क्या है वो अलग अलग लोगों पर होता है, मगर कारण होती ही है। कुछ लोग किसी से कोई अच्छी बात भी ऐसे पूछते हैं, सुनिए अच्छी तरह, कुछ लोग किसी से कोई अच्छी बात भी ऐसे पूछते हैं कि लोग उनकी बातों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग किसी को कुछ राय देते समय शब्दों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि लोग उनकी बातों का गलत अर्थ लगा बैठते हैं, ठीक है, गलत अर्थ लगा लेते हैं, गलत अर्थ लगा बैठते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बातें दैनिक जीवन में होती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर किंतु कभी कभी तो सचमुच में किसी की बातें ऐसी होती है जिनका अर्थ गलत लगाकर लोग नाराज हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी बात सोच समझ कर बोलें, किंतु हम वैसे तो मनुष्य है ना, इसलिए गलती हमसे हो जाती है, होती है, जरूर गलती होती है, एंड गलती हो भी सकती है। बोलते समय कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, जिसके कारण हम कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। इसलिए किसी बात का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ हमें नहीं लगाना चाहिए। जरा सोच समझ कर ध्यान से, है ना, ध्यान से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है ना, लिसनिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दूसरे के विषय में कुछ भी कह जाते हैं बगैर सच्चाई को जाने या समझे, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, और कुछ लोग इसमें माहिर होते हैं, किसी के बारे में कुछ जो भी चाहे हम कह देते हैं, ठीक है। तो हम दूसरों के बातों में आकर बगैर खुद ही देखे, बगैर खुद ही सुने, इसे सच मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दूसरे की बातों हम बात सुनकर उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि जो बताने वाला होता है ना, पूरे कॉन्विक्शन के साथ बताते हैं, इतनी अच्छी तरह बताते हैं कि लोग को लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, मगर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। कभी कभी लोग जलन भाव के कारण भी दूसरों के विषय में गलत कह जाते हैं, कहते हैं ना, मगर देखिए, खैर ये किसी एक पर लागू नहीं होती है, जो भी मैं कह रही हूँ, इनमें से जो भी मोतियाँ आप चुनना चाहें, अगर आपको ठीक लगे तो आप चुन सकते हैं जो आपको ठीक लगे, और जो ना ठीक लगे आप उसे बेअंदाज कर दीजिए। देखिए, किसी भी बात को कहने या सुनने के लिए आपके पास आपको बैलेंस बनाकर चलनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस होकर सोचिए ये मगर बैलेंस होना सही गलत सोच समझ कर, ये एक बहुत ही स्पेशल स्किल होती है लोगों के पास, जिनके पास होती है, ठीक है, उनके पास
कुछ लोगों को कुछ लोग कहते हैं, मगर वो समझा देते हैं उनसे कि देखिए हमने तो सुना नहीं, तो मैं इसमें विश्वास नहीं करना चाहती हूँ। और अन्य लोगों के इश्यूज को खुद पर लागू पहले करना चाहिए आपको। अगर कोई आपको कुछ बताए या आप किसी को देखते हैं कुछ हालात से गुजर रहे हैं, तो उसे आप खुद पर लागू कीजिए कि ऐसा सोचिए कि अगर ऐसा आपके साथ होता तो आप कैसे फील करते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा होता तो आप उनके शूज में होते तो कैसा आप महसूस करते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोच समझ कर उस हालात में आप अगर फिट इन होंगे तो ही आप जो भी कमेंट्स करेंगे तो आप सही कमेंट करेंगे। मगर जब तक आप उनके शूज में नहीं जाएंगे, उनके उनके लाइफ के बारे में खुद पर नहीं लागू करेंगे, आप टोटली सही ढंग से नहीं जवाब दे पाएंगे। सो एनीवे, ये थी आज की पारिवारिक विषय। उम्मीद है कि आप ऑफ कोर्स आप उसे सोचेंगे, इस पर अमल करेंगे, एंड अमल करने के बाद आप आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आ सके इससे, तो आप ज़रूर इसे समझिए और तो फिर उस पर उसके बारे में आप सोचते ही रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर बात के असली मकसद या मतलब को छोड़कर उसका गलत मतलब या बावंडर जैसा इसे बना लेते हैं ना, क्योंकि वे चीज़ों को गहराई से नहीं समझते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और सिंस इस पर बात हो रही है, तो जो गलत फहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बात को बिना पूरी सुने या समझे अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेना, ये गलत है। और बायस भी हम हो जाते हैं किसी इंसान या स्थिति के बारे में, पहले से ही हम मन में अगर नेगेटिव सोच बनाकर रखते हैं कि वाह देखो ये इंसान ऐसा है, तो उसके मुख से जो भी निकलता है आप नेगेटिव ही सोचेंगे उनके बारे में। ऐसा मत करिए, ये बहुत ही गलत काम है। अहंकार और गुस्सा यानी ईगो और एंगर अपनी बात को सही साबित करने की जिद में साधारण बात को भी बड़ा विवाद बना देते हैं लोग। और ओवरथिंकिंग छोटी या सामान्य बात को ज्यादा ही सोच विचार कर नेगेटिव रूप दे देना, ये ठीक नहीं है। सो एनीवे, चलो इसे तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। और हाँ जी, भाई बहन का प्यार, कुछ ही देर में मैं एक गीत आपके लिए लेकर आऊंगी, मगर अभी तो आप ये नगमा सुनिए। होपफुली मैं इसे आपके लिए प्ले कर सकूँ।

0: शादी करोगी मुझसे?
1: जी, ये फिल्म धर्मात्मा का नगमा और हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्म आई गई, और फिरोज खान तो आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी फिल्में देखकर ऐसा लगता है अभी ये बंदा जिंदा ही है, हमारे साथ ही है. सो एनीवे, देखिए, रक्षाबंधन आने वाली है, एंड हाँ जी 28th, हाँ जी 28th ऑफ ऑगस्ट कहा गया है, बस एक हफ्ता ही है, और मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ कह दूं, क्योंकि अगले सप्ताह तक जब मैं आऊंगी रविवार को, तब तक तो देर हो जाएगी. खैर, वैसे तो सभी लोग जानते हैं रक्षाबंधन क्या है, मगर कुछ हमारे ऐसे भी भाई बहन हैं जिनको शायद ना पता हो. तो रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्यार का एक बड़ा त्यौहार है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है. भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है, और ये खास तौर से सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है. और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाइयों और बहनों को, और आपका ये जो प्यार है ये सदा बना रहे, और ईश्वर आपको लंबी उम्र और बहुत सारे खुशियां दे, हमारी ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ. और देखिए, भाई के लिए तो हमेशा बहना खुशी रहते हैं, अपने भाई के लिए खुश रहना ही चाहिए, और क्यों ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. भाई बहन का प्यार, ये कभी अलग नहीं होते हैं, सदा एक दूसरे के लिए रहते हैं. सो एनीवे, ये गीत मैं सभी भाइयों और बहनों के लिए पेश करती हूँ, एंड

बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए वैसे तो 28 को कहते हैं, मगर कभी कभी भद्रा हो जाती है ना, तो प्लीज अपने पंडित जी से या किसी से पूछकर ही आप रक्षाबंधन अपने भाई की कलाई में बांधिए।

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा ये नगमा, और सभी भाई बहन को हम यहाँ से याद कर रहे हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो ये रिलेशनशिप है ये सदा बनी रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक और नगमा सुनते हैं। अब यहाँ से हम कार्यक्रम के मोड़ को बदलेंगे और आपको लेकर चलेंगे पुराने गीतों की दुनिया में। एंड सो आज का जो सबसे पहला गाना है वो जी हाँ, इसे हम पेश करते हैं, फिर आपको बताएंगे।

हाँ जी, याद रखिए जो वर्ड हमने यूज की है आज इंग्लिश शब्द, एंड दैट इज स्माइल, SMILE, आप उस पर काम कीजिए। मैं अभी कुछ ही देर में उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है?

हाँ जी, कभी कभी ऐसे गीत बज जाते हैं, मगर कोई बात नहीं। चलो, ये देखिए, ये बेहद दुख की बात होती है जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति के साथ हमारी कैसी घनिष्ठता है, हम उनके साथ बिताए पलों और उसकी बातों को याद कर दुखी होते हैं। भावनाओं को न केवल आंसुओं के माध्यम से बल्कि शब्दों के माध्यम से भी हम उनके परिवार तक पहुंचते हैं। उनके परिवार से किस तरह से हम जाकर उन्हें मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो ये सब बहुत ही दुख की बात होती है ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में। और जब, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जब इंसान ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता है, क्योंकि ये रीति हमने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। तो अपने अपनों को खो देना किसी भी परिवार के लिए बेहद कष्टदायक घड़ी होती है। और ऐसे में मैं आज स्वर्गीय प्रभा मिश्रा जी, जो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती फिजी की, मीडिया से जुड़ी हुई, कई वर्षों से उन्होंने मीडिया में कार्य की है और बहुत बहुत सारे लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे और प्यार करते थे। फिर उधर बाद में वो न्यूजीलैंड आई थी, यहाँ पर भी रेडियो उन्होंने की, और उसके बाद ब्रिस्बन, अभी ब्रिस्बन में रहती थी, और वहाँ पर भी, यहाँ पर भी रेडियो ब्रिस्बानी के साथ वो जुड़ी थी कई कई समय तक। तो मेरे साथ उनका लगाव था, क्योंकि जब मैं फिजी जाती थी तो वहाँ पर भी मुझे इंटरव्यू कर लेती थी, और यहाँ पर भी हमने साथ काम की है। और इसके साथ साथ हमारे परिवार के साथ भी उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा। इसलिए अब मुझे पता है कि आप लोग भी उन्हें जानते होंगे, मगर ये बहुत ही दुख की बात है उन परिवार के लिए। मगर मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सदगति प्राप्त हो और उनके परिवार को इस कठिन अवसर से गुजरने का जो समय है, उन्हें उन्हें भी शांति दे। और इसीलिए मैंने इस गीत को आज चुनकर लाई हूँ कि बस हमारे लिए सिर्फ यादें ही रह जाते हैं जब हमारे अपने इस दुनिया से निकल जाते हैं ना, तो पीछे हम सभी रह जाते हैं। तो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि उनके परिवार को ईश्वर शांति प्रदान करे।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

हाँ जी, लव्स कम पड़ जाते हैं ना, लव्स कम पड़ जाते हैं जब जज्बात गहरे होते हैं, पुरानी धुनों के साए हमेशा दिल पर सुनहरे होते हैं। तो खो जाइए सुरों की इस मखमली समंदर में, क्योंकि इन गानों पर यादों के पहरे होते हैं। तो चलो चलते हैं आगे, और जो वर्ड स्माइल मैंने दी थी ना, अंग्रेजी शब्द, तो उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है मुस्कान। स्माइल को हिंदी में मुस्कान कहते हैं, या फिर मुस्कुराहट भी कहते हैं एज अ नाउन, और मुस्कुराना एज अ वर्ब। ठीक है, तो देखिए, अगर नाउन तो नाउन लेते हैं हम मुस्कान, तो मुस्कान उसे कहते हैं, फिर मुस्कुराहट ना, तो इंग्लिश में स्माइल, जैसे कि सेंटेंस फॉर्म में अगर आप बोलना चाहते हैं कि प्लीज स्माइल फॉर द फोटो, ठीक है, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं कृपया फोटो के लिए मुस्कुराए, वेरी फॉर्मल। हाँ जी, और दूसरी ओर शी हैज अ वेरी स्वीट स्माइल, शी हैज अ स्वीट स्माइल, तो हिंदी में उसे कहते हैं कि उसकी मुस्कान प्यारी है। ठीक है, और फिर आप अगर कहना चाहते हैं कि ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल, हाँ, तो हिंदी में उसे कहते हैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा मुस्कान के साथ करें। सो ये थे चंद एग्जांपल्स, और कीप काम एंड ऑलवेज स्माइल, कीप काम एंड ऑलवेज स्माइल, उसको हिंदी में कहते हैं शांत रहे और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो ये थे चंद शब्द आपके लिए, और बस कुछ ही देर में हम अपने स्पॉन्सर्स का संदेश आपके लिए पेश कर देंगे, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही मेरी। सो अबाउट 6:50 है अभी, और ये गीत आप सुनिए, बहुत ही बढ़िया सा नगमा है, आप इसे सुनिए और फिर हम बाद में। यस, लवली सॉन्ग, एंजॉय।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हाँ जी, देखिए अगर आपको एडवर्टीजमेंट करानी है तो ऑफ कोर्स आप एंजेला से संपर्क कीजिए, रेडियो ब्रिजवानी, एंड आपका एड वो।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: Yes, do consider this one, ठीक है? और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, सभी को सपोर्ट कीजिए ताकि वे रेडियो ब्रिजवानी को सपोर्ट करें।
4: To loved ones in Fiji is super easy. केवल अपने nearest dairy, supermarket और petrol station पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 top up. आप वेबसाइट www.digicelinternational.com विजिट भी कर सकते हैं डिजिटल टॉप अप अपने फैमिली को फीजी देने के लिए। पैसा भेजने के लिए आवर पार्टनर क्लिक एक्सप्रेस पिक इज द इजिएस्ट वे टू सेंड मनी टू डिजिसेल फीजी। केवल आपको रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल।
2: हाँ जी, डिजिसेल, ठीक है। और अंत में लोटस।
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: जी देखिए, वक्त का पहिया चलता है, शाम ढल ही जाती है, पर सुरीली यादें ही रह जाती है ना। सब अलविदा कहने को मन तो नहीं कर रहा है, पर अगले रविवार मिलने की उम्मीद और बढ़ जाती है ना। बस सुरीली यादें दिल में ठहर जाती है।

नमस्कार, वेलकम बैक। रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर एक बार फिर से आ गई है आपके सताक्षी लेकर आपके लिए एक प्यार भरा और खूबसूरत सफर इस वीकेंड एक बार फिर से फरमाइशी गीतों में आपके साथ मैं हाजिर हूँ। और फरमाइशी गीतों का ये सफर जो है ये कुछ खूबसूरत यादों और बातों के साथ हमने रच दिया है। जी हाँ, लेकिन ये बातें और ये मुलाकातें जो है वो इसलिए खास है क्योंकि इनमें आपकी फरमाइशें शामिल है। फरमाइशी गीत जिसके जरिए मुझे हमेशा मिलते रहे हैं आपके ढेर सारे मेल्स मैसेजेस जो ये बताते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार कितनी मोहब्बत करते हैं, आप रेडियो ब्रिस्वानी को कितना प्यार दे रहे हैं और कितना ज्यादा आप फरमाइशी गीतों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से इसी सफर के साथ मैं सताक्षी आपके साथ हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी बातें और कुछ खास नगमे। तो चलिए फरमाइशी गीतों की शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। अच्छा हाँ, अगर अभी तक सुनते रहिए फरमाइशी गीत। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और बतानी रह गई भाई। हाँ हाँ, गाना प्ले कर रहे हैं लेकिन जरा सुन तो लीजिए। ये कह रही हूँ कि आज बड़ा ही खास दिन है क्योंकि आज मुझे जो मेल्स मिली है वो सारी की सारी भाई बारिश के गानों की है। यानी कि आप किसी भी मौसम का मजा ले रहे हो इस वक्त, आप अपने घरों में बारिश फील करने वाले हैं। बहुत सारी जगहों पर इस वक्त बारिश हो भी रही है तो बस वो मजा फील करते हैं। चलिए वो रोमांस वो बढ़िया सा माहौल बनाते हैं। तो हमें लिखते रहिए, हम आपके लिए प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ।

फरमाइशी गीतों में जो पहला मेल मुझे मिला है वो है मेलबर्न से और ये हैं जयंत सिंह। जयंत कहते हैं हाय सताक्षी, रेडियो ब्रिस्बानी पर ये मेरा फर्स्ट मेल है और बीते दिनों मैं घर गया था। मेरा घर इंडिया में है, मेलबर्न में मैं पोस्टेड हूँ, मेरी जॉब है और इसलिए इंडिया जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन, तो मैं जाता हूँ, छुट्टियों में जाता हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत माहौल है इस समय, बारिश का वहाँ पर सीजन है और एक गाना जो है वो ऐसे मौसम में मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, वही गाना आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो प्लीज प्ले कर दीजिए भीगी भीगी रातों में। बहुत खूबसूरत गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, भीगी भीगी रातों में, प्यासी बरसातों में। ये गाना है फिल्म अजनबी का जो रिलीज हुई थी 1974 में। राजेश खन्ना और जीनत अमान पर इस गाने को फिल्माया गया है और ओरिजिनली इस गाने को अपनी आवाज दी है, यानी प्लेबैक सिंगिंग है किशोर कुमार और लता जी की। तो चलिए बारिश का रोमांस एंजॉय कीजिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी पर फरमाइशी गीत।

सो फरमाइशी की तो मैं जो अगली रिक्वेस्ट अगला मेल मुझे मिला है वो मुझे मिला है इंडिया से और ये है संजीव का। संजीव कहते हैं कि हाय सताक्षी, मैं दिल्ली से हूँ इंडिया में और इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत मौसम है यहाँ का। बड़ी झड़ी सी लगी हुई है बारिश की, बरसात की, बूंदों की। तो कई रोमांटिक गाने याद हैं मुझे, लेकिन एट अ टाइम एक ही गाना सुन सकते हैं, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं आज एक ऐसा गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, जो हम लड़कों के लिए बारिश में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। भाई बारिश में आप बात करते हैं चाय और पकौड़ों की, हम बात करते हैं कि कहीं से थोड़ा पीना पिलाना हो जाए, दोस्तों का साथ हो जाए, तो बारिश का मजा आ जाता है। संजीव जी, ये जो बात है ये अच्छी नहीं है भाई। मूड बनाना तो चलिए एक अलग बात है, कभी हो गया, लेकिन बारिश तो 2-3 महीने की होती है। अगर आप ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पीते पिलाते रहेंगे तो फिर बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। वेल, गाना आपने बड़ा ही प्यारा चूज किया है, जिसको सुनने के बाद तो पक्का बहुत लोगों का मूड बनने वाला है। नाजायज फिल्म से आप सुनना चाहते हैं बरसात के मौसम में। हाँ, इस गाने को अपनी आवाज दी है रूप कुमार राठौर और कुमार शानू ने, और लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के और म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। तो चलिए इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए। हमारे साथ स्क्रीन पर है नसरुद्दीन शाह और बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने गाया है, जिसे हम आपके लिए इस वक्त प्ले कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी नाजायज फिल्म से आपके लिए बरसात के मौसम में।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: रेडियो प्रसारणी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत। जी हाँ, आज फरमाइशी गीतों में हमने लगा दी है बारिश की झड़ी, क्योंकि आज हम वो गाने रिक्वेस्ट करवा रहे हैं आपसे। इनफैक्ट बहुत सारे मेल्स मेरे पास ऑलरेडी आए जब आज उन गानों के जो बारिश के हैं, बरसात के हैं, तो मैंने सोचा कि आज की थीम ही ये कर देते हैं भाई, सबके गाने वही ले लेते हैं जो आज बारिश के गाने। एक बढ़िया सा प्रोग्राम और बहुत ही खूबसूरत गाना रेडी हो जाएगा। वैसे जब बारिश की बात होती है तो मुझे 1942 लव स्टोरी का एक गाना याद आता है, जो अनफॉर्चुनेटली आज अभी तक रिक्वेस्ट नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको प्ले कर दूं। रिमझिम रिमझिम। जी हाँ, ये गाना जो है, मुझे इसके बिना बरसात जरा अधूरी लगती है और बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसे एंजॉय कीजिए फिलहाल, उसके बाद देखते हैं कि अगली रिक्वेस्ट हम किसकी ले रहे हैं फरमाइशी गीतों में। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और बने रहिए इस वक्त सताक्षी के साथ, इस बारिश से भरे रोमांटिक सॉन्ग्स के मौसम में।

मैंने कहा था ना ये बहुत ही प्यारा गाना और रोमांटिक गाना है, तो बस ऐसे ही गाने हम आपके लिए चूज करते रहते हैं। वैसे आप भी कम नहीं है, आप हमें इतनी प्यारी रिक्वेस्ट करते हैं सॉन्ग्स की कि हमें लगता है कि यार इतना खूबसूरत गाना हमसे कैसे मिस हो गया। अभी देखिए ना, एक ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है और ये है संजीता शेख की, और आपने हमें लिखा है उत्तराखंड से। और संजीता कहती हैं कि हाय सताक्षी, आपने जैसा कि कहा कि आज बारिश के गाने प्ले हो रहे हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है यहाँ का, और मैं एक बढ़िया सा गाना सुनना चाहती हूँ आज रेडियो ब्रिस्वानी पर। रहना है तेरे दिल में फिल्म का एक गाना है, जरा जरा बहकता है। ये गाना दिया मिर्जा पर फिल्माया गया और ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। ये गाना मैं अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, आपके सभी लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी मिलकर आज इस गाने को सुने और गुनगुनाए। संजीता, बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब सब एक गाने को गुनगुनाते हैं ना, तो उस गाने की खूबसूरती बढ़ जाती है, निखर के आ जाती है, और फिर मुझे लगता है कि सब उससे कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये गाना वाकई एक ऐसा गाना है भी जो सिर्फ आप रेडियो पर सुनते नहीं हैं, आप उसे ऑटोमेटिक गुनगुनाना शुरू करते हैं। रहना है तेरे दिल में से जरा जरा बहकता है। इस गाने की डिटेल पर अगर जाऊं तो बॉम्बे जयश्री ने इस गाने को गाया है और समीर साहब ने अपनी खूबसूरत कलम से वो अल्फाज निकाल दिए हैं जो आपको मदहोश कर देते हैं। तो इंजॉय कीजिए आप सबके नाम ये अगला ट्रैक, और खासकर हमारी संजीदा के नाम। स्टे ट्यून्ड, रेडियो बुला मस्ती सुनते रहिए हमारे साथ। फरमाइशी गीत।

तो चलिए देखते हैं कि अगला मेल हमारे पास किसका है। और ये है आमला जी का। एक बार फिर से आमला सिंह ने हमें लिखा है और ब्रिस्बेन से आपने हमें लिखा है। और आमला कहती है कि बस मैंने सुना कि आप रेनी सॉन्ग्स, बरसात के गाने आज हमें रिक्वेस्ट करने के लिए कह रही हैं सताक्षी, तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी एक गाना सुनना चाहती हूँ। बड़ा ही पॉपुलर गाना है और ये गाना मैं बहुत सुनती थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, और अभी भी ये गाना जो है वो जब बारिश के गानों की बात आती है तो सबसे पहले जहन में आ जाता है। तो ये गाना मैं सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ जो इस वक्त बारिश के इन गानों का मजा ले रहे हैं और इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स को भी ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, वो दोस्त जो इस गाने का मजा मेरे साथ लिया करते थे। तो मुझे सुनवा दीजिए फिल्म मोहरा से टिप टिप बरसा पानी। आय हाय, बड़ा ही रोमांटिक गाना आमला जी आपने रिक्वेस्ट किया है, टिप टिप बरसा पानी। यस, बहुत ही प्यारा गाना है। और मोहरा जब रिलीज हुई थी तो ये गाना जो है ये बड़ा ही पॉपुलर और मुकम्मल हुआ था। आज भी इस गाने को, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस गाने को रिक्रिएट भी किया गया हाल ही में। तो जब खूबसूरती होती है गानों की ना, तो ऐसी लाजवाब होती है। टिप टिप बरसा पानी अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में है ये गाना। विजू शाह का म्यूजिक है और आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। तो चलिए इंजॉय कीजिए मेरे साथ टिप टिप बरसा पानी मोहरा फिल्म से, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: जी हाँ, ये साथ है, ये सफर है फरमाइशी गीतों का, जिसमें आपकी रिक्वेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं और हम उन्हें आप तक पहुंचाने की कर रहे हैं पूरी पूरी कोशिश। हम जानते हैं गानों से आपको बहुत ही खास मोहब्बत है और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमें लिखते रहिए हमारे रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज पर अपनी पसंद के गानों को। आप जरूर हमसे कुछ ऐसे गाने सुनना चाह रहे हैं जो अलग हैं, जो नॉर्मल ही हम प्ले नहीं कर पाते हैं रेडियो प्रस्वानी पर, और मुझे सच में बड़ा मजा आ रहा है उन गानों को प्ले करके, तो हमें लिखते रहिए। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय कीजिए इसे भी और उसके बाद देखते हैं कि अगली मेल और अगला रेनी सॉन्ग कौन सा है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी है आपके साथ।

सो वेलकम बैक। और वक्त आ गया है उस मेल को जानने का जो आज की हमारी अगली मेल है, और ये है कैलिफोर्निया से। और आपने लिखा है हमें, कैलिफोर्निया से लिखा है, और ये लिखने वाले हैं डॉक्टर शुभांशु। डॉक्टर शुभांशु कहते हैं कि सताक्षी, मैंने बस अभी अभी सुना कि आप वो गाने आज सुनवा रही हैं जो बारिश पर बेस्ड हैं, और मैं सबसे पहले तो बता दूं आपको कि ये मेरा रेडियो ब्रिस्वानी पर पहला मेल है। अभी बस मैं ये शो सुन रहा था आपका, तो मैं भी आपको मेल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बहुत ढेरों मेल जरूर होंगे, रिक्वेस्ट होंगी, बट मेरी रिक्वेस्ट भी जरूर आप शामिल करेंगी। तो लीजिए जनाब, आपकी रिक्वेस्ट को हमने सुधांशु जी शामिल कर लिया है हमारे रेडियो प्रसवानी पर फरमाइशी गीतों का सफर। इस वक्त आप सुन रहे हैं। सुधांशु जी कहते हैं कि सताक्षी, मैं उस गाने को सुनना चाहता हूँ जो इतना खूबसूरत है कि उसके हर एक वर्ड में बारिश है। उसी गाने को, दिल तो पागल है के गाने, कोई लड़की है, प्ले कर दीजिए मेरे लिए। और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ खासकर उस लड़की को जिसके सच में आने से मौसम खुशनुमा हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, और अक्सर मैंने देखा है कि सच में बारिश हो जाती है। जनाब क्या बात है, मतलब आप तो बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। और जिसको भी आप ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं, जरूर आपकी फीलिंग्स उनको या तो पता है या जरूर पता होने वाली है। वैसे आप सुनना चाहते हैं कोई लड़की है, फिल्म दिल तो पागल है का ये गाना है, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज है। आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के गीतों को लिखा था और इस गाने को भी उन्होंने लिखा है, और उत्तम सिंह का म्यूजिक है। स्क्रीन पर द वेरी वेरी गॉर्जियस हमारी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और किंग खान, या कहें किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: फरमाइशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आपकी फरमाइशों को हम दे रहे हैं पंख और उन्हें पहुंचा रहे हैं आप तक। तो इन फरमाइशों के साथ हमारा आपका समा जो है वो आगे जारी रहेगा, बढ़ता रहेगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

मेलबर्न से नेहा ने किया है हमें आज का अगला मेल। और नेहा कहती हैं कि सताक्षी, मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और मुझे कोई ऐसा गाना सुनने का मन है जिससे नींद भी भाग जाए और झूमने का मन करे। एक्चुअली मुझे ड्राइव के वक्त बहुत तेज नींद आती है और नॉर्मली तो ड्राइवर होता है, लेकिन आज ड्राइवर भी साथ में नहीं है। तो भाई नेहा, सबसे पहले तो रोड पर ध्यान रखिए, झूमने का इंतजाम हम करते हैं, नींद भगाने का इंतजाम आप कर लीजिए। पहले पानी पीजिए और उसके बाद गाने को गाना शुरू कीजिए। जब भी आप वर्ड्स गुनगुनाते हैं ना तो नींद भाग जाती है। और आपने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये गाना प्ले हो और नींद आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। नाजिया हसन जी की जादुई आवाज में है ये गाना, 80s का डिस्को बीट इसे आप कह सकती हैं। तो नेहा जी, सेफ ड्राइविंग और आपकी मस्ती के नाम प्ले करती हूँ ये ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं हमारे साथ फरमाइशी गीत।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: फरमाइशी गीत एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आपकी फरमाइश पर आपके लिए प्ले कर रही हूँ कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने। तो इन गानों की खूबसूरती आगे भी जारी रहेगी। हमें रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर बताते रहिए अपनी पसंद के गाने और उन गानों को आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं ये भी। एक और ट्रैक एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

सिद्धांत हैं हमारे साथ अभी और आपने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से आज का ये एक और मेल और आप लिखते हैं कि सताक्षी केके और शान 90s से 2000 तक इनका जो जलवा था वो बहुत ही गजब था। मुझे याद है सताक्षी जब मैं कॉलेज में था तो इन दोनों के गाने हमारे वॉकमैन में अक्सर बजा करते थे। वो वॉकमैन का जमाना था और हमने बहुत इंजॉय किए हैं। पिकनिक हो चाहे बस का सफर हो, हम स्कूल जाते हुए चुपचाप छुपा करके वॉकमैन को अपने पास रखते थे और गाने सुनते हुए चुपचाप जाते थे। मजे की बात ये रही कि हमें कोई कभी पकड़ नहीं पाया। तो सिद्धांत आपकी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं भाई शान और केके के साथ। अफसोस कि आज केके हमारे बीच नहीं है, लेकिन हाँ उनके जबरदस्त गाने हमारे साथ जरूर हैं। तो चलिए, वैसे भी केके की आवाज का मतलब होता है स्कूल और कॉलेज के दिनों में डायरेक्ट टाइम ट्रेवल करना। तो यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, इसी ट्रैक को सुनवाए आपको। हाँ, ये हमारे साथ सुनिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन पर फरमाइशी गीत।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: So last but not the least, Surbhi Jaiswal ki hai mere paas ye aaj ki last mail. Aur Surbhi ne hame likha hai Canada se. Surbhi kehti hai, hi Satakshi, Radio Praswani par basically meri pehli mail hai. Aur main yun to bahut sare gaane dedicate karna chahti hu apne apno ko, lekin wo sab gaane aaj jo aapki theme hai us par fix nahi ho rahe hain. Maine suna ki aaj aap rain सॉन्ग सुनवा रही हैं, रेनी सॉन्ग्स आप सुनवा रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत एक गाना मुझे याद पड़ता है. वैसे तो मेरी ये पहली मेल है और पता नहीं शामिल आप करेंगी कि नहीं, लेकिन फिर लम्हे में एक गाना है मेघारे मेघारे, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है और बड़े ही खूबसूरत इसके वर्ड्स हैं. तो प्लीज़ ये गाना ज़रूर प्ले कीजिएगा. सुरभि, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमें पहला मेल करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली आज के प्रोग्राम का ये लास्ट मेल है. सो थैंक यू सो मच. और कनाडा से आपने हमें लिखा है, अच्छा लगा जानकर के आपको बॉलीवुड के गानों की इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है. यस, लम्हे फिल्म का ये गाना और बहुत ही खूबसूरत गाना है. लम्हे फिल्म के और गानों की बात होती है जैसे मेरी बिंदिया तेरी निंदिया या कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, बट इस गाने की मेघारे मेघारे की बात ज़रा कम होती है. इला हरुण और लता मंगेशकर जी ने इस गाने पे अपनी आवाज़ दी है और श्रीदेवी पर यह गाना फिल्माया गया है. मेघारे मेघारे तेरा मन तरसा, बहुत ही प्यारा गाना, इसे मैं जरूर प्ले करूंगी और अपने ऑडियंस को भी सुनवाना चाहूंगी. बहुत प्यारे लिरिक्स हैं इसके, तो इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत.

तो दोस्तों, ये थे आज वो गाने जिनको सुनने के बाद आपके मन में भी फुहारें जरूर उठने लगी होंगी और आज आपका मन भी एकदम रोमांटिक हो गया होगा। हाँ, मतलब कितना खूबसूरत सीजन है, मौका भी है, वीकेंड्स भी हैं, तो निकल जाइए अपने प्यार के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ इस वीकेंड को खास बनाने के लिए। हाँ, अब अगले वीकेंड पर होगी आपसे मुलाकात। जी हाँ, सैटरडे डिलाइट में भी होगी और फरमाइशी गीतों के लिए भी आप हमें लिखते रहिए अपनी फरमाइशें, हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के सफर से, इस प्रोग्राम से इजाजत लेना चाहती हूँ, तो देंगे ना मुझे इजाजत? हाँ, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले हफ्ते कुछ नए गानों और बेहतरीन बातों के साथ। आज के सफर से सताक्षी कहेगी आपको नमस्कार।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज? स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ। वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs.
3: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
4: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
3: Acha? Wo kya?
4: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
3: Lekin mama ke liye money lene kahin door jana possible nahi hoga.
4: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896। दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
8: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ऐ मेरी हमराज मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपसे हर हफ्ते मिलना अब तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाए। तो जमीन, सुर और सांस तैयार है? अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में भी ढल जाए।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर निले और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए, कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए, एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए, उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्ते तन्हाई में जो पत्थर आ गए।

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त? इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे कारवाई गजल, कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर ले, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरों जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाए गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर गजल बहार, मैं हूं निले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है, कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए, उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा। नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फेरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नील आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हैं हम, तब बड़े होने की जल्दी होती है। पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है। कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है। और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए, तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक यर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था, शाखे जर्द का एक बरगे खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला। मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा। तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा। पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है न होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वां पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना, मनाना, तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है, है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवां गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन, मैं तेरा आईना हूं। मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली, मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग, दरिया हूं और प्यासा हूं। आती रुत मुझे रोएगी, जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया, रुक कर सोचने का टाइम आ गया। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चलें तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिजर भी जो न मजबूर होता।

जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं नीले आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होठों पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत और कुर्ब का दस्तूर होता। है आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प की मैंने यह गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निले से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। रब्त का फल है, जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा। एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा। मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे। टेक केयर, बाय, नमस्कार।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
4: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है. यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है. जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ. अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो. होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा.
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
5: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
6: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on.
7: Tall event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी. फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट में. $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे. मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट. ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट. समाज, संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति, संगीत और समुदाय की एक शाम. ग्रैंड भजन नाइट. कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त, 0452-584-926. ग्रैंड भजन.
8: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
9: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
8: अरे वाह, इनका पता बताना.
9: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
10: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ऐ मेरी हमरथ मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन।

पॉल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452 584 926। ग्रैंड

ना बदला में, ना बदला।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

ये जीवन इतना अनमोल है कि हम जो चाहें अपनी सांसों के इस दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सांसों को, इस जीवन को, इसके महत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आइए आज एक बार फिर से कुछ सद्विचारों के साथ अपने ही जीवन को समझने की एक और कोशिश करते हैं हमारे रेडियो प्रस्वानी के सुबह के खास सफर जीवन आधार में। श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, जीवन आधार के सफर में आज एक बार फिर से आपके साथ। तो चलिए इस अगले गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु गुरु की महिमा अपरंपार है और आपको इस संसार के भंवर से अगर बाहर निकलना है, इस संसार के भंवर को पार करना है तो गुरु का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म बिना गुरु के जीना नहीं सिखा पाया है। गुरु की जरूरत हर धर्म में पड़ी है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और सही ढंग से पूरा करने के लिए। इस संसार से पार पाने के लिए एक सही रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जीवन में अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो बचपन से लेके आखिरी सांस तक आपका साथ निभाता है। इसलिए गुरु पे भरोसा रखिए और गुरु से शिक्षा लेना मत भूलिए। गुरु है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत पार कर जाएंगे और इसीलिए तो शायद भगवान ने भी गुरु को खुद से ऊपर बताया है। तो आइए हम सबके गुरुओं को नमन करते हैं और सुनते हैं ये गुरुवाणी। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। ये सफर कुछ ऐसे विचारों से भरा है जो इस सुबह हमारी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना रहे हैं, और भी हमें जीने के तरीके सिखा रहे हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। एक ऐसे ही विचार को आगे सुनने से पहले एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी का एक एक दोहा जीवन का सही महत्व सिखा देता है। कितनी सही बात है ना, जब जैसे चक्की चलती है और दो पटरों के बीच में जो भी कुछ पिसता है वो साबुत नहीं बचता है। ठीक इसी तरह से जब दो लोगों के बीच में आप पड़ते हैं, फिर चाहे वो आपके अपने हों गैर हों, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी चक्की में पिस जाते हैं। आप पर भी उंगली उठती है, आपको भी दोषी ठहराया जाता है, आप बच नहीं सकते। आप जाएंगे तो दो लोगों के बीच सुलह कराने, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसी बात में फंस कर रह जाते हैं। आप भी उसी चक्की के एक पाटे के बीच में अनाज का एक ऐसा दाना बन जाते हैं जो उसमें पिस जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि पत्नी और माँ के बीच में अक्सर पति फंस जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहावत है, असल में जिंदगी में यही होता है। जब भी आप दो लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच आपका अस्तित्व भी आ ही जाता है, और यही जीवन का सत्य है, यही रिश्तों का सत्य है। इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

साक्षी को सुन रहे हैं आप जीवन आधार में रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। कुछ ऐसे विचारों पर हमारा आपका साथ जो इस सुबह के साथ हमारे आज के दिन को भी खूबसूरत बनाते हुए हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की ओर एक अगला कदम है। अभी एक गीत के साथ आगे बढ़ूंगी और उसके बाद जीवन आधार में और भी कई खूबसूरत बातें आपके साथ बांटूंगी। सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

कितने भी अच्छे कर्म करने की सोच लें, आप कितना भी गंगा नहा लें, आप कितने भी तीर्थ कराएं, आप मक्का काशी काबा कहीं भी घूमाएं, अगर मन साफ नहीं है तो आपको शांति भी कहीं नहीं मिलेगी और ऊपर वाला भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर ग्रंथ में एक ही तो बात कही गई है कि मन के मैल को साफ कीजिए, अपने अंदर झांकिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से या फिर ईश्वर ईश्वर ढूंढने से, जगह जगह घाट घाट पे जाके ईश्वर को ढूंढने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक आप दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होंगे और दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, तब तक आपके मन का मैल धुला नहीं है और तब तक ईश्वर को तो छोड़ दीजिए, आपको शांति की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को साफ करिए। रोज नहाकर तन तो धो लेते हैं, मन का मैल भी धोइए। और मन का मैल गंगा नहाने से नहीं धुलेगा, मन का मैल धुलेगा मन को साफ करने से, दूसरों के लिए खासकर अच्छे विचारों को अपने दिल में अपने मन में जगह देने से, अच्छे कर्म करने से। आइए उन्हीं कर्मों के नाम ये अगला गीत सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

भी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुखे हैं, दुखी हैं, दुखी हैं कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है हम उस पर ना ध्यान देके हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन को जानने का समझने का सुबह का हमारा खास सफर जीवन आधार। आज इस सफर को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे और इस वादे के साथ कि कल फिर से जीवन आधार में कुछ अनमोल विचारों के साथ आपसे फिर से हमारी जरूर होगी मुलाकात। ऊपर वाला आपको खुश रखे, रहम दिल रखे और जीवन के पथ पर आगे बढ़ाता रहे, आपकी खुशियां बरकरार रहें, इसी मनोकामना के साथ आज लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs.
3: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
4: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
3: Acha? Wo kya?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा?
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट।
5: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
9: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वाला मंडे जी। मंडे आ गया है और अगर आप सोच रहे हो ओ नो फिर से मंडे, तो जरा रुकिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मंडे को ना बोरिंग बनाना भी हमारे हाथ में है और मंडे को ब्यूटीफुल बनाना भी हमारे हाथ में है। सो कॉफी रेडी है, कार में हूँ या फिर घर से काम कर रहे हो, जहाँ भी हो, वॉल्यूम को हमेशा की तरह थोड़ा सा अप कर दीजिए, क्योंकि ब्रिस्वानी शो में हम यहाँ पे चांदनी का सफर प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन के साथ। और ये मॉर्निंग को स्टार्ट करने का जो हमारा एक प्यारा सा रूल है हाथ में कॉफी वाला, वो तो स्टार्ट हो ही चुका है दोस्तों। और आज का एक सिंपल रूल ये भी रखा है मैंने कि भाई आज कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हमने बेकार की स्ट्रेस हमने नहीं लेना है, बस एक प्यारा सा नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट करना है। तो इधर उधर की बातें सब पानी में डाल दीजिए जी, पॉजिटिव रहिए और अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव वाइब के साथ ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रिस्वानी में। से दोस्तों, कैसा गया आपका वीकेंड, कैसा गया सैटरडे संडे? होप सो कि आप सभी ने इंजॉय जरूर किया होगा, गए होंगे अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने, स्पेंड किया होगा टाइम उनके साथ। बिकॉज दोस्तों, कहते हैं ना कि पूरा मंडे टू फ्राइडे हम जरूर वर्क करते हैं, लेकिन सैटरडे टू संडे दोस्तों फैमिली को देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो घर के काम है उसमें हाथ बटाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक दूसरे पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, और उसे बढ़ाने के लिए अगर हम एक दूसरे की हेल्प करें वो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देना जरूरी है जैसे हम अपने और कामों को देते हैं। सो दोस्तों, हमेशा ऐसे ही खुश रहें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें और अंडरस्टैंडिंग जरूर रखें। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं ब्रिस्बेन की इम्पोर्टेंट लोकल न्यूज की। ब्रिस्बेन के ब्रूकफील्ड एरिया में संडे को हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक सॉलिडरिटी वॉक में जो है शामिल हुए, और ये गैदरिंग एक यंग वुमेन के एलिज्ड अर्ली मॉर्निंग सेक्सुअल असॉल्ट के बाद कम्युनिटी सपोर्ट दिखाने के लिए हुई। कम्युनिटी मेंबर्स ने मैसेज दिया कि लोकल वुमेन्स को सेफ फील करना चाहिए और ऐसे इंसिडेंट्स को सीरियसली लिया जाना चाहिए। सेफ्टी और कम्युनिटी सपोर्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और अब एक पॉजिटिव कम्युनिटी स्टोरी। संडे को मेटल्स ब्रिस्बेन टू गोल्ड को साइकिल फॉर कैंसर में मोर देन 3600 साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और ये 100 किलोमीटर राइड थी जिसका की एम कैंसर रिसर्च, पेशेंट सर्विस और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए फंड्स रेज करना था। इमेजिन कीजिए दोस्तों, 3600 से ज्यादा लोग एक मिशन के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट कम्युनिटी स्पिरिट लुक लाइक, है ना। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

देखने को मिलेगा। और एक बिग हाइलाइट्स है कार्ला जंपती, जिसका की स्प्रिंग 2026 कलेक्शन जो है वो ब्रिस्बेन में शोकेस हो रहा है। तो अगर फैशन आपका थिंग है, ब्रिस्बेन में इस वीक स्टाइल डेफिनेटली ही एंड दायर है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

है ना, तो ब्रिस्बेन में अगस्त के एंड में इवेंट्स काफी हैपनिंग है, म्यूजिक फेस्टिवल्स, कल्चर इवेंट्स और एक्टिविटीज के लिए ना ब्रिस्बेन का इवेंट्स जो है वो कैलेंडर बिल्कुल पैक्ड है। तो एक काम करिए, वीकेंड को ना सिर्फ घर पर स्क्रॉल करते हुए वेस्ट मत करिए, गो आउट एक्सप्लोर ब्रिस्बेन, मेक अ मेमोरीज। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, उसके बाद जानेंगे स्पोर्ट्स के अपडेट, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

इस ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर, आपके अपने दोस्त आरजे जानी जैन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मंडे के बाद वीकेंड प्लान्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं

हाँ जी, तो आइए बढ़ते हैं आगे, स्पोर्ट्स क्विक अपडेट जानते हैं। दोस्तों, क्वींसलैंड प्रीमियर रग्बी सेमी फाइनल्स में वेस्ट्स ने नॉर्थ्स को 40-23 से डिफीट किया और ग्रैंड फाइनल में जगह बना ली। वेस्ट अब ग्रैंड फाइनल में ब्रदर्स के अगेंस्ट फेस करेगा और प्रीमियर वुमेन्स कंपटीशन में सनी बैंक ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड को 27-12 से हरा कर ग्रैंड फाइनल स्पोर्ट सिक्योर किया। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे इस ट्रैक के साथ ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम मैगजीन रेडियो ब्रिस्वानी में। दोस्तों, इस ट्रैक के बाद बैठे बैठे सोचा कि एक स्टोरी आप सभी के साथ शेयर की जाए। एक लड़की रोज सुबह अलार्म बंद करके कहती थी कि आज नहीं कल से प्रॉपरली स्टार्ट करूंगी। फिर कल आया, फिर उसका अगला कल आया। एक दिन उसने डिसाइड किया, मुझे परफेक्ट डे का वेट नहीं करना, मैं जो कर सकती हूँ आज से ही करूंगी। और वही छोटा सा डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। सो ब्रिस्बेन, डोंट वेट फॉर मंडे टू बिकम परफेक्ट। मंडे को ना खुद परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। इसीलिए हम आज का काम कल पे ना छोड़े, कल का काम परसों पे ना छोड़े, जो करना है, जो परफेक्ट लगता है, वो आज ही कर डालें। तो दोस्तों, ये था आज हमने अपने मंडे को शानदार बनाया है रेडियो ब्रिस्वानी में, और आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। और इसी ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ, स्टोरी के साथ, आज का ब्रिस्वानी मॉर्निंग शो यहीं पर रैप करते हैं। हमेशा याद रखना, आपको पूरा वीक एक साथ हैंडल नहीं करना है, बस आज का दिन अच्छे से जीना है ना। आज का दिन अच्छा जाएगा तभी तो आप कल के बारे में सोचोगे कि कल क्या करना है। सो बी काइंड, स्माइल मोर, ड्राइव सेफ, और अपने फेवरेट लोगों को एक बार जरूर बोलना कि आपका ना होना मेरे लिए वाकई ही लकी है। क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तो सामने वाला ना खुश तो होता ही है और उसको प्राउड भी फील होता है। सो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपकी अपनी दोस्त आरजे जानी जैन को, और आप सभी सुन रहे हैं, बने हुए हैं रेडियो ब्रिस्वानी में। सो हैव अ ब्यूटीफुल मंडे ब्रिस्बेन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सदाक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। हमारे सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश बोला, हमारे प्रधानमंत्री को भारत दौरे की जल्दबाजी नहीं, भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने तारिक रहमान को द्विपक्षीय दौरे के लिए आमंत्रित किया है। उन्हें 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने का न्योता भी मिला है। फ्रांस के पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन सितंबर में। फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बूसी सेंट जॉर्जेस में बने बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का सितंबर 2026 में उद्घाटन होगा। इसे फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। उद्घाटन के साथ 2-14 सितंबर तक 13 दिन का फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित किया जाएगा। इसमें हिंदू परंपराओं, भारतीय कला संस्कृति और संगीत से जुड़े कार्यक्रम होंगे। लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और समझने का इसमें मौका मिलेगा। ईरान बोला, होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा और किए गए वादे पूरे करेगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। रेजाई ने कहा कि अमेरिका पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, उसके बाद ही होर्मुज खोलने पर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। आइए अब जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। स्पेस में सैटेलाइट रीफ्यूलिंग दवाइयां बनाने की तैयारी, पीएम मोदी से मिले स्पेस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने बताया प्लान। अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग, कचरा हटाने वाले रोबोट और हवा में तैरती दवाइयां। भारत का स्पेस सेक्टर अब फिल्मों में दिखने वाली टेक्नोलॉजी सच करने पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 स्पेस स्टार्टअप फाउंडर्स से खास बातचीत की। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार उद्यमों का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, रिस्क लेने वालों को पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये बातचीत 21 अगस्त को की गई थी लेकिन वीडियो अब रिलीज किया गया है। अब जुड़ते हैं खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 2 दिन में हराया। ऑस्ट्रेलिया ने मैकॉय में खेले गए दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 51 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। डार्विन में पहला टेस्ट 9 विकेट से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले में शानदार वापसी की। ये टेस्ट 2 दिन में ही खत्म हो गया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मेजबानी पर। सबका प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता नमस्ते।
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते एवरीवन।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन।
2: गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैनिक मंडे। टुडे इज द 24th ऑफ ऑगस्ट एंड एट द मोमेंट इट्स 14 डिग्रीज आउट हियर।
1: Well, today was 13 and 24. कल के लिए 14 and 25 रहेगा दोस्तों। कुछ बारिश होने की संभावना है, छोटा मोटा इधर उधर। और showers easing on Wednesday 16 and 27 रहेगा।
2: Ooh.
1: Yeah, so
2: warm, pretty warm.
1: और फिर Thursday को partly cloudy रहेगा, 13 and 25 रहेगा। थर्सडे को रेन नहीं होगा दोस्तों। फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी, 14 एंड 25 रहेगा, नो रेन। और सैटरडे को पार्टली क्लाउडी, 13 एंड 25, 1 मिलीमीटर रेन। और संडे को पॉसिबल शावर्स, 13 एंड 25, 1 मिलीमीटर रेन। तो ये रहा हमारा, क्या बोलते हैं, वेदर, मौसम और
2: रास्ता।
1: Southern Crossway Hendra, स्टेशनरी व्हीकल है, नो ब्लॉकेज साउथ बाउंड टूवर्स ईगल फार्म। और गेटवे मोटरवे नजी हैजट जो था साउथ बाउंड, ये सब क्लियर हो गया है दोस्तों। और हाँ, ये सब सही चल रहा है मेरे ख्याल से अब।
2: That's good.
1: Yeah. What else?
2: I think there was slight rain here and there.
1: Oh, it rained. It rained. And yeah, so. ओके चलो एक गीत सुनते हैं, फिर हम वापस आएंगे दोस्तों। नंबर है 04300031701, ठीक है, या 3279-1701 पर भी आप कॉल कर सकते हैं।

0: ओके चलो एक दो एड सुन लेते हैं दोस्तों, फिर हम वापस आएंगे। रेडियो बिस्वानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। नंबर है 04300031701, ठीक है। ऑलराइट, और अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो आप आ सकते हैं।
1: इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से।

0: और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में।
4: पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। Friday 28 August 6:30 PM Logan West Community Hall Wine Glass Hall Hillcrest में $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर Elevate Forklift। ग्रैंड भजन नाइट Friday 28 August 6:30 PM Logan West Community Hall Wine Glass Hall Hillcrest। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926.
5: Great. Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर Elevate Forklift। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
6: ओके कुछ लोग टेक्स्ट कर रहे हैं लेकिन रेडियो में आना नहीं चाहते।
7: yeah,
6: क्या बात भाई।
7: ओके सो इट्स मोर कॉमन देन वी थॉट।
6: या
7: बट नथिंग्स रॉन्ग विद दैट।
6: नथिंग रॉन्ग विद दैट। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? नथिंग रॉन्ग विद दैट।
7: बट हाउ कम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड मैरिज इट वाज फाइन टू शेयर द रूम, टू शेयर द बेड?
6: व्हाट डू यू मीन?
7: We are more resilient
6: to different kind of bugs and all that, right?
7: Oh my god.
6: Oh, how stupid can we get? Anyway. Oh my god.
7: More resilient?
6: I mean, like you are stronger, right?
7: Are you?
6: You don't catch cold very quickly, you know, and all those things, you know. But anyway, jokes apart. Okay, here we go. I'm going to take his call. पंडित जी आप इस समय एयर पे हैं, आपका स्वागत है रेडियो बिजवानी पर।
8: जतिन जी धन्यवाद आपको कॉल लेने के लिए और
6: जी।
8: प्रोग्राम सुन रहे हैं, हंसी मजाक यही तो जिंदगी है ना।
6: जी हाँ
8: जी, यही लंबा जिंदगी ले जाता है। बोलते कौल पकड़ना पकड़ता नहीं है, सर्दी नहीं आती है, हंसी खुशी में जिंदगी करो, कुछ नहीं होगा।
6: कुछ नहीं होगा पंडित जी, एकदम यही सीक्रेट है। चलो सबको शेयर
8: करिए, यही सीक्रेट है ना।
6: हाँ,
8: कभी कभी हमें भी लोग बोलते हैं आप लोग कैसे नीचे बैठते हो ना।
6: जी जी,
8: प्रैक्टिस। नीचे बैठने का वही रहस्य है कि प्रैक्टिस करना है ना।
6: जी पंडित जी, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आप भी रात को उठकर चलते हो कभी? जैसे कि आपके पास भी बहुत ज्यादा वो रहता है, मैं जानता हूँ आपके पास भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, आई नो, आपका माइंड साइज सोता नहीं होगा जी।
8: हम एक बार खाट में जाते हैं सुबह उठते।
6: अच्छा,
8: पंडित जी इतना व्यस्त रहता है दिमाग और सभी कुछ की बॉडी, तभी लोग पूछते आप क्यों पतले हो भाई, हमारे साथ आओ एक दिन तो पता चल जाएगा क्या बात।
6: जी सही बात।
8: बात यही है, रहस्य यही है। नहीं वो भाई अपना भी ना, अपना हेल्थ है, सुबह तो बोलते है ना।
6: जी हाँ सही बात है।
8: तो जो बैठने वाली बात हम बोल रहे थे कि नीचे बैठने का रहस्य यही है कि एक एक एक्सरसाइज है, उसको पलथी बोलते हैं।
6: पलथी जी हाँ, पलथी मार के
8: अगर आप हफ्ते में एक दो बार कर ले तो आपका आधा बीमारी वैसे भाग जाएगा,
6: जो नी का जॉइंट ये सब ठीक हो जाएगा।
8: जी हाँ, वो पूरी सर से लेकर टॉ तक जाती है ना।
6: सही बात है, सही बात है। ये सब देखो हमारा हमारे
8: हम लोग अपना जो असली चीज सब छोड़ रहे हैं ना।
6: जी सही बात है, कंफर्ट की ओर चले गए, बहुत ज्यादा कंफर्ट।
8: जी जी जी, बहुत कंफर्ट की तरफ। अब जैसे हमारे घर अभी अष्टमी है तो अब लोग पहले से आप खोजते बैठने के लिए ना, तो हमें लगभग 100 चेयर जो तो बैठने के लिए खोजना पड़ेगा।
6: अच्छा, एक में मेरा नाम लिख देना पंडित जी।
8: जी एक आज का नाम लिख देना
6: मेरा थोड़ा,
8: और एक अमिता जी का भी।
6: जी हाँ।
8: तो ठीक है, तो यही हम फोन कर रहे थे कि हमारे घर पर अष्टमी है और रक्षाबंधन के त्योहार चल रहा है, श्रावण मास है
6: जी,
8: तो लोग रक्षाबंधन भी बांध रहे हैं ना। कभी कभी लोग सोचते हैं आखिरी दिन ही बांधेंगे, लेकिन आखिरी दिन अगर ग्रहण वगैरह लग गया तो अशुभ माना जाता ना।
6: जी सही बात।
8: तो जब मौका मिले भाई बांध लो, भाई
6: है।
8: बहन का रिश्ता तो है, बस उतने पे करना चाहिए ना।
6: जी बिल्कुल,
8: और ना हो तो फोन से बात कर लो अगर भाई बहन दूर है ना।
6: सही बात है,
8: अपना संपर्क रखे, अपना जो रिलेशनशिप है वो बनाए रखे, अच्छा संबंध रखे सभी से, वही तो हमारा असली बात है, बांधना तो दूसरी बात है।
6: आजकल तो बहुत आसान हो गया पहले जमाने में, इसीलिए जो रक्षाबंधन बहुत ज्यादा मायना रखती थी उस समय, क्योंकि पहले जमाने में जब बहना चली जाती थी तो शायद बहुत मुश्किल से मिलते थे, बहुत दूर दूर ट्रांसपोर्ट नहीं। जी हाँ, आजकल तो भैया वीडियो लगाकर बात कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वो जमाना कुछ और था, शादी के लिए जब लोग शादी करने जाते थे तो एक रोज दो रोज पहले शुरू कर देते थे ना चलने को।
8: हाँ, पैदल चलना था।
6: बहुत बहुत
8: कठिन। तो वही है, अब तो वर्चुअल पूजा, वर्चुअल रक्षाबंधन भी हो सकता है,
6: सब हो सकता है। तो पंडित जी कुछ दिन में हम, अफसोस हूँ मैं, अफसोस से कहना पड़ेगा, शायद कुछ दिन में पंडित लोगों भी नहीं नीड करेंगे, क्योंकि शायद डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा एक दिन भगवान के साथ वर्चुअली।
8: हो जाए तो अच्छा है, बीच में हमारा कुछ नहीं रहेगा।
6: चलो
8: तो जी हाँ, यही था जतिन जी, आपका हम बड़ा ख्याल भी करा दे कि कृष्णाष्टमी भी शुरू हो रहा है शनिवार से।
6: जी हाँ,
8: तो जैसे आप लोग को मौका मिलेगा, कहीं अच्छा। भी मौका मिले, हमारे घर भी निमंत्रण है आप लोग का।
6: अच्छा जी,
8: और जगह जगह पर हो रहा है कृष्णाष्टमी।
6: जी जी,
8: और रक्षाबंधन के त्योहार सभी के लिए मंगलमय हो।
6: जी बहुत धन्यवाद पंडित जी।
8: धन्यवाद जी,
6: धन्यवाद। तो चलो पंडित सूरज जी हमेशा हमारे प्रोग्राम में भाग लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो
7: पंडित जी सेड ही गोज टू स्लीप and he just gets up the next morning.
6: Because he's a very active man, he's always got something to do.
7: He must be like extremely exhausted as well.
6: He does get exhausted, I know. He, मेरे ख्याल से कर्मकांडी पंडित है, कुछ करना हो तो जाकर पहले डिग करने लगता है, हवन कुंड बनाने लगता है। That's पंडित सुरेश। और anyway, तो he definitely gets tired.
7: I think
6: he sleeps well.
7: Mm.
6: I envy those people who can sleep
7: yeah,
6: 6 hours to 7 hours to 8 hours.
7: Yeah, me too.
6: You know what I mean?
7: Mm.
6: I don't know. I think it's the mind that you can't shut up your mind. If you don't shut off, things just keep coming, don't they?
7: Mm.
6: Yeah. Anyway, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो नंबर है 04-3003-1701 पर आप हमसे बातें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या आप चाहे तो हमारे पास क्या व्हाट्सएप भी है, सब कुछ है।
7: व्हाट्सएप भी है, गूगल स्टूडियो नंबर
6: 3279-1701. इट्स इजी 1701. ओके 3279 अगर आप वो देखे अल्फाबेट इट्स इजी इजी 1701. You can't forget it, can you? चलो गाना सुनते हैं दोस्तों, फिर वापस आएंगे. Okay.

0: और दोस्तों मैं पढ़ रहा था और यहाँ पे कह रहे हैं कि समटाइम्स वर्ड हर्ट्स मोर देन एक्शन.
1: या दैट्स सो ट्रू.
0: ओके सो गुस्से में अगर होते हैं तो क्या कहना वो भी सेलेक्ट करके आप बोले. ये नहीं जो आ जाए कह देना. कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ. क्या गाना बोला?
1: कह दो
0: तुम्हें या मैं चुप रहूँ. आजकल हम लग रहा है कि हम सिर्फ गाने में बात करते हैं. ओके ऑलराइट.
1: आई थिंक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग एंग्री.
2: टक टक तुन्ना ना दिन दिन्ना टक टक तुन्ना ना दिन दिन्ना टक टक तुन्ना ना दिन दिन्ना टक टक तुन्ना टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक

0: Okay, Tata, bye bye.
1: और not yet, we still got 20 minutes, 19 minutes. अभी तो
0: बाय बाय नहीं करेंगे दोस्तों, हाँ थोड़ी देर में बाय बाय कर लेंगे आपसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भूलना मत, इस कार्यक्रम के बाद भी सताक्षी के साथ रहेंगे और 11 बजे से संदेश के साथ, और फिर 3 बजे से आप हो जाएंगे दिव्या के साथ. ओके, निविया श्याम, आप सुनिएगा कार्यक्रम दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको. चले आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत.

0: ओके दोस्तों, बस कुछ 12 मिनट रह गए इस प्रोग्राम में और कल तो हम आएंगे जरूर, कोशिश करेंगे कल।
1: ये वादा रहा।
0: डू यू थिंक इट्स गुड टू वादा?
1: नो, बिकॉज
0: यू नेवर नो, दिस टू
1: यू समटाइम्स यू मेक अ प्रॉमिस एंड यू ब्रेक दिस प्रॉमिस एंड दैट्स नॉट गुड।
0: यू मीन यू जनरली? आई मीन
1: या जनरली
0: या
1: या So only make some promise if you know you definitely can and will keep it. We can't promise to be here tomorrow. It's not in our control. But we will do our best to get here. How's that?
0: Go ahead. Go on.
1: Think about it. It's not in our control.
0: No, some of it is in our control.
1: Look, we plan not to all. Get here, but what if we don't?
0: Okay, इस बात को यहाँ पर हम गिरा देते हैं और हम कोशिश करके कल आएंगे फिर।
1: हाँ,
0: चलो भी एक दो गाना
1: कोशिश करेंगे।
0: कोशिश से बढ़कर कुछ और क्या हो सकता है दुनिया में।
1: ऑफ कोर्स।

प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। भाई मुझे पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सताक्षी कब आओगी, आओगे कब तुम, वो साजना अंगना फूल खिलेंगे। तो लीजिए, फूल खिल गए, बहारें आ गईं, सूरज निकल आया और सताक्षी भी आ गई लेकर आपके लिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हूँ इट हैपेंस के सफर में। ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारे नगमे हैं, ढेर सारे किस्से और कहानियां हैं और पूरी कोशिश है आज एक बार फिर से कि आपके ये दो घंटे बहुत ही स्पेशल हों और सुबह का ये जो वक्त है जो आप हमें दे रहे हैं, ये वक्त हम आपके लिए भी कीमती बना दें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये वेस्ट कर दिया टाइम हमने, बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त हो। तो चलिए इस वक्त को खास बनाते हैं, शुरू करते हैं आपके इट हैपेंस को हमेशा की तरह आपकी सताक्षी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत स्पेशल और बहुत खास हैं आज और अपने दिन को खास बनाने की बहुत तैयारी कर रखी है आपने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए इट हैपेंस।

वेलकम बैक इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। सताक्षी, इसके पहले कि शो की शुरुआत करें, उनको विश करना चाहेगी जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है। हम जानते हैं बर्थडे बेबीज की, आप बर्थडे बेबीज क्यों कहती हूँ मैं आपको, कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है ना। हाँ, तो बर्थडे बेबीज इसलिए कहती हूँ कि देखिए, जब हमारा बर्थडे होता है ना, उस दिन हम बड़े छोटे होते हैं। भाई मेरा तो सिंपल फंडा है, जिस दिन मेरा बर्थडे होगा मैं किसी को ट्रीट भी नहीं दूंगी। भाई क्यों दूं, मैं अभी भी तो पैदा हुई हूँ, आप मुझे पार्टी दीजिए, है ना। तो इसीलिए हम बर्थडे बेबीज हैं। सो आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और आई विश की जिंदगी का हर ख्वाब पूरा हो, हर ख्वाब मुकम्मल हो। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, और एक दूसरे के साथ जिंदगी के सफर पे हाथ थामे यूं ही आगे बढ़ते रहिएगा। जिनके लिए स्पेशल और खास है आज का दिन, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कई बार हम कहते हैं कि ब्लेसिंग्स उसके पास हैं जिसके पास पैसा है। भाई पैसा है तो सब कुछ है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन ब्लेसिंग्स क्या हमेशा पैसे से आती हैं? नहीं जी, ब्लेसिंग्स लोगों से भी आती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतने खूबसूरत होते हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, और जिंदगी जो है वो खूबसूरत होती चली जाती है, बेहतरीन होती चली जाती है, और हमारी जिंदगी में खुशियां आती चली जाती हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो आपके आसपास दुआएं हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको जिंदगी में एंजॉय करते देखना चाहते हैं, आपको जिंदगी में खुश देखना चाहते हैं। और ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो फिर जिंदगी में भला और क्या ही चाहिए। ऐसे ही लोगों के नाम है ये अगला ट्रैक भी, इसे सुनिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी। दोस्तों सताक्षी आपके साथ है।

वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, इट हैपेंस का ये खूबसूरत साथ और सफर जिसमें आपके साथ मेरी ढेरों ढेर बातें हो रही हैं। वैसे सुबह बड़ी फ्री भी लगती है मुझे कभी कभी, नहीं नॉर्मली लोगों के लिए बड़ी भागदौड़ भरी होती है, लेकिन देखिए ना आपके साथ बात करने के जो अंदाज है हमारे वो तो यही बताते हैं ना कि एकदम बढ़िया से मूड में हम बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। वैसे हमारा तो ये काम ही है जनाब कि हमें आराम से बैठकर आपसे बात ही करनी है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ है अभी। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा भागदौड़ शुरू कीजिए ताकि टाइम पर आप अपने कामों को खत्म कर सकें और अच्छे से अपने दिन की शुरुआत कर सकें। एकदम मिसमैनेज ना रहे दिन की, भाई शुरू से ही भागदौड़ शुरू कर दी, सुबह ही हमारी बड़ी मिसमैनेज हुई, ऐसा वाला माहौल घर का नहीं रहना चाहिए, ना ऑफिस का ना काम का रहना चाहिए। इसलिए आप काम करते रहिए, मैं आपसे बातें भी करती रहूंगी और गाने भी प्ले करती रहूंगी। आइए एंजॉय कीजिए फिलहाल ये अगला ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो प्रस्वानी सताक्षी आपके साथ है।

0: इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानिक पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस में गानों की हैट्रिक में इस वक्त हमें जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हमारा साथ निभा रहे हैं और अभी आपने पहला गाना सुना था, आप दूसरे गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ।
1: बदले

गानों की हैट्रिक के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये है लास्ट ट्रैक, लेकिन कहीं मचाइएगा, इसके बाद बहुत ढेर सारी बातें और बहुत बेहतरीन गाने आपको सुनवाऊंगी। फिलहाल गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी 1701 AM, सुनते रहिए ठैपन सताक्षी के साथ।

इंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रिजू ब्रिस्वानी 1701 एम पर, और इट हैपेंस में आपके साथ आज एक बार फिर से ढेरों ढेर बातें हो रही हैं। वैसे बहुत खूबसूरत लगते हैं ना वो लोग जो अपनी सेल्फीज पर स्माइल करते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो बहुत मुस्कुराते हैं। कई बारी अपना दर्द भी ये अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा ले जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता है यार। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये इतने दर्द में थे हमें एहसास भी नहीं हुआ। हम कहते हैं ना कुछ लोगों के बारे में ऐसा कि यार मैं तो पता ही नहीं चला इसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, तो होती है कुछ लोगों में ये एबिलिटी कहूँ या टैलेंट कहूँ, उनका क्या कहूँ, कि वो मुस्कुराकर हर दर्द को छुपा लेते हैं। वैसे मुस्कुराहट का एक और भी फायदा है, अगर कोई आप पर नाराज है और आप उससे मुस्कुरा देते हैं ना तो वो बंदा आपको ज्यादा कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसा हथियार है जिसके साथ बड़ी बड़ी जंग जीत ली जाती है ना। और लड़कियों की मुस्कुराहट तो है ही फेमस भैया, लड़के गिर पड़ते हैं एक मुस्कुराहट पे लड़की की कहते हैं। तो ये मुस्कुराहट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए है भाई। आप सब इस स्माइल के जरिए, इस मुस्कुराहट के जरिए दुनिया जीत सकते हैं। आइए फिलहाल लड़कियों वाली स्माइल के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ है।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर एक बार फिर से आप सबको सुप्रभात। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है और आज लेट हो गए हैं। वैसे लेट होना ना आपकी आदत बनती जा रही है जनाब, और उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन ये है कि रात को देर तक मोबाइल फोन जो चलता रहता है, सोशल मीडिया, जी हाँ सोशल मीडिया पर आप हमेशा ज्यादा देर तक जुड़े रहते हैं, और होता क्या है फिर सुबह देर से उठते हैं। लेकिन कहते हैं कि सूरज निकलने के बाद जो लोग उठते हैं ना, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में पीछे होते चले जाते हैं। सनराइज देखना बहुत जरूरी होता है और बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। लेकिन चलिए सनराइज ना भी देखिए, सूरज निकल भी आए लेकिन कम से कम तब तो उठ जाया करिए। इट हैपेंस, भी मिस कर देते हैं आप, भाई ये सही बात नहीं है, है ना? तो कल से नहीं होना चाहिए। चलिए फिलहाल आपके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।